0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना, मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित भूषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यानम और स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर गाना खत्म हुआ काफिराना। एंड कल क्या धमाल हुआ है फुटबॉल में मेरी जान। इवन दो आई वॉज विथ अर्जेंटीना, हाँ जी, लेकिन मुझे ये पता था कि स्पेन जिस तरह का गेम खेल रहा है ये भी चैंपियन बन सकता है। एंड टूर्नामेंट के पहले से ही मुझे स्पेन की टीम स्ट्रांग लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने यूरो कप जीता था वहां पर इनका पल्ला भारी था, और इस टूर्नामेंट में भी जिस तरह से वो खेल रहे थे दे डिजर्व टू विन। और कल तो भाई लगा ही नहीं कि अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है, ऐसा लगा मानो लीग मैच की शुरुआत हुई है। मतलब फर्स्ट मिनट ऑफ द मैच से जो लगातार छाए रहे स्पेन के प्लेयर, फाइनली वर्ल्ड कप जीत कर ही माने। और साल 2010 में आंद्रे इनिएस्ता ने भी एक्स्ट्रा टाइम में गोल कर जिताया था, और इस बार भी सेम हुआ। एक जबरदस्त फाइनल जो हम देखना चाहते थे शायद वो नहीं दिखा, और लामिन यमाल ने तो अपने पैरों से बहुत जादू बिखेरा, लेकिन कल मेसी का जादू कहीं खोसा गया था। वेल इतने कहेंगे, फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में जैसे ही गोल मारा पूरी दुनिया में स्पेन को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर स्पेन के लोग भाई झूम उठे हैं। एंड सबसे खास बात यह थी कि मेसी फैंस तो मेसी फैंस हैं, वो आखिरी मिनट तक सोच रहे थे कुछ कारनामा होगा, लेकिन भाई स्पेन वालों ने मौका ही नहीं दिया। और वो बात अलग है कि मेसी फैन जीवन भर मेसी फैन बनकर रहे, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन भी कल स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे, ये देख के अच्छा लगा। मस्त बॉलर और बस इतना ही कहेगा, एक शानदार टूर्नामेंट खत्म हुआ। एंड फॉर अस द ट्रीट वाज भाई जब हमने मैडोना को परफॉर्म करते देखा, हमने शकीरा को देखा, हमने पूरे के पूरे वो के पॉप बैंड को देखा। एंड इतना ही कहना चाहता हूँ, एक शानदार टूर्नामेंट खत्म हुआ, और अब अगले चैंपियन के लिए इंतजार करना पड़ेगा साल 2030 का। शुरुआत करते हैं सुबह सुबह मिर्ची मॉर्निंग्स की, मिर्ची इट्स हॉट।
1: तारीख पर तारीख।

0: हालांकि कल रात में मोरनी नहीं बोल रही थी, बल्कि फैंस जो हैं वो खुश हो रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले रात 10 बजे से शुरू हुआ और हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहा था। एंड इतने ही कह सकते हैं कि स्पेन ने इतिहास रच दिया और दोबारा जीता ये फीफा वर्ल्ड कप। वेल, बता दें साल 2000 के बाद की यानी कि 21st सेंचुरी की बात की जाए तो स्पेन वो टीम है जिसने कामयाबी को दोबारा चखा है। यस, 2010 में जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ तब स्पेन चैंपियन बनकर उभरा था, जहां पर एंड्रे इनिएस्ता ने गोल किया था। वहीं कल रात भी हमने देखा स्पेन ने इतिहास रच दिया और स्पेन पहली कंट्री बन गया दुनिया की जिसमें मेंस एंड वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप टाइटल होल्ड कियो। यानी कि साल 2023 में जब फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ तो भी स्पेन की लड़कियां कमाल की करके चैंपियन बनी और अब स्पेन के लड़कों ने धमाल कर दिया है। वेल, इतना ही कहूंगा, स्पेन से हम लोगों का बहुत पुराना नाता है भाई। आफ्टर ऑल हमारी फिल्मों में यहाँ की शूटिंग बहुत है और उसी में से एक फिल्म जिसके गाने को मैं यहाँ प्ले करने जा रहा हूँ और हमारा अपना सेलिब्रेशन का तरीका होगा ये अगला गाना मिर्ची पर स्पेन वालों के लिए।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: भाई 5 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिला इस पेन को। अरे यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं भाई साहब। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात खत्म हुआ। स्पेन ने हरा दिया अर्जेंटीना की टीम को और मेसी के सपनों को तोड़ दिया, लगातार बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीतने के सपने को। एंड मेसी शायद कल आखिरी बार अर्जेंटीना की जर्सी नंबर 10 में दिखाई दिए अपनी टीम के लिए खेलते हुए। पहले इतना ही कहना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि मामला जो है अर्जेंटीना के पक्ष में ज्यादा किया जा रहा है, फीफा चाहता है अर्जेंटीना जीते, लेकिन कल जीत हुई स्पेन की, क्योंकि जो खेलेगा सही जीतेगा, वही हम हमेशा से कहते आए हैं। और कल स्पेन वाकई में डोमिनेटिंग खेल रहा था एंड कहीं से भी नहीं लगा कि अर्जेंटीना की टीम चैंपियन वाला खेम खेल रही है। इन सबके बीच चैंपियन टीम स्पेन को मिलेंगे 51 मिलियन US डॉलर। हाँ जी, 51 मिलियन के बाद अर्जेंटीना को मिलेंगे 34 मिलियन। थर्ड प्लेस इंग्लैंड ने 30 मिलियन डॉलर अपनी एंटी में किए, वहीं फ्रांस को मिला 28 मिलियन। क्वार्टर फाइनल खेलने वाली सारी टीमें जो हार गई उन्हें 20 मिलियन ईच मिले। राउंड ऑफ 16 तक जो टीमें पहुंची थी उन्हें 16 मिलियन US डॉलर मिले। राउंड ऑफ 32 तक जो टीमें खेली उन्हें 12 मिलियन डॉलर मिले। एंड ग्रुप स्टेज तक पहुंचने वाली टीमों को 10 मिलियन। इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें और आपको सिर्फ एक दूसरे से दुश्मनी मिली है। जिस तरह से आप अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं हमारा रोनाल्डो जीतेगा, तुमसे क्या मतलब, तुम तो जलते हो रोनाल्डो से, कोई फायदा नहीं दोस्त, पैसे घर लेके गए और हम दोस्ती में थोड़ी दरार। हां जी, इसलिए बहुत ध्यान से सेलिब्रेट कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीता अगली बार जीतेगा। आपका हीरो 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मॉल गौरव आपके साथ। मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: वैसे मिस्टेक तो बहुत लोगों से कल हो गई जब उन्होंने स्पेन की जगह अर्जेंटीना का नाम लिखा, जब मैंने पूछा कौन जीतेगा। हेलो जी, वेलकम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मस्त मौला गौरव आपके साथ सुबह सवेरे, क्योंकि आफरीन छुट्टी पर है एंड ऐसे में मेरे ड्यूटी जिम्मेदारी लगी है तो मैं उसको पूरा निभाने आया हूँ। इन सब के बीच कल रात में कैसे मैंने फीफा वर्ल्ड कप देखा मैं ही जानता हूँ। मुझे याद था कि सुबह स्टूडियो भी आना है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाए, सोए दोपहर में, उसके बाद रात में उठ के देखे और फिर सुबह जल्दी तड़के आपके लिए आए। वेल, कल मैंने पूछा था बताइए कौन सी टीम, गेस कीजिए कौन सी टीम विनर बनेगी। बहुत सारे लोगों ने अर्जेंटीना लिखा, बहुत सारे लोगों ने स्पेन लिखा, लेकिन जो दो लकी लोगों को मिर्ची की तरफ से हैम्पर मिलने जा रहा है, जाकिर एंड फैसल भाई। यस, जाकिर एंड फैसल, आप दोनों को मिलता है मिर्ची का ये गिफ्ट हैम्पर। एंड थैंक यू कहिएगा मस्त मौला गौरव को जिसने आपको ये बात बोली और आपने सही जवाब देकर आज जीती हमसे ये गिफ्ट। हाँ जी, फिलहाल तो मस्त मौला गौरव आपको मैसेज कर बता देगा कब कहाँ कैसे कलेक्ट करना है। एंड इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाए ऐसा नहीं होता, और ऐसे ही कल मेसी को भी लगा होगा कि शायद वो नहीं हो पाया जो मैं सोच रहा था, पर कोई नहीं, यू प्लेड लाइक अ चैंपियन, यू विल ऑलवेज रिमेंबर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ फुटबॉल। एंड शायद आखिरी बार हमने लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड नेमार को देखा, अब शायद आगे ये धुरंधर नहीं दिखने वाले। वेल, मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज,
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
4: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी, जेसीबी से।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: आसमानी, लेकिन फिलहाल तो आसमान से सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही है आनी।
1: मस्त मौला गौरव।
0: आपको वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे अगर कल आप स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे, और कल और ज्यादा दुखी होंगे अगर अर्जेंटीना को मेरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। वेल, लेकिन सच बोलूं तो अर्जेंटीना और स्पेन दोनों ही मेरी फेवरेट टीम थी। मैं कह रहा था मेरे लिए तो सिचुएशन राखी जी जैसी हो गई थी, मेरे करण अर्जुन आएंगे यानी कि मेरे करण अर्जुन जीतेंगे टाइप सिचुएशन थी। दो आई वॉज सपोर्टिंग मेसी फॉर द लास्ट टाइम ऑन फील्ड, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एक नई जनरेशन ऑफ फुटबॉल लामिन यमाल की टीम ने कल कमाल कर दिया। इन सब के बीच मौसम फिलहाल वही गर्मी का बवाल कर रहा है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: वेल, इतने कहना चाहता हूँ जबरदस्त गर्मी हमारे कदर को घेरे हुए, ह्यूमिडिटी रात में तो चक्के छुड़ा दे रही भाई साहब। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर आज 44 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहेगा, वाइल मिनिमम विल बी अराउंड 32 एंड राइट नाउ की बात करें 33 डिग्री है। हैं जी, सुबह के 6:50 के करीब हो रहे हैं और उसमें भी फीलिंग असली वाली 36 के आसपास है। हवाओं की रफ्तार बिल्कुल नदारद सी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल तो रही है, पर यह वही काम कर रही है जो हमसे 2 किलोमीटर लगे पंखे करते हैं। मिर्ची, इट्स हॉट।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जिनेली एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता, रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओ गॉड, हेलो जिनेली, सॉरी यार, टाइम हो गया। सॉरी
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Emergency Helpline?
1: या या या मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है हु?
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए, व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा हु? हु? तो खुद डिसाइड कर।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: विशाल मिश्रा की आवाज में फिल्म टॉक्सिक का गाना तबाही आपके कानों तक किसने पहुंचा दिया। एंड फिलहाल वेरी गुड मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग्स पर आजकल आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि आफरीन छुट्टी पर है। सुबह के 7:04 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: चलिए जी, जिसके ये लगभग पिछले एक महीने से हम सब लगे हुए थे वो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हो गया। हाँ जी, एंड स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर मेसी के सपनों को तोड़कर साल 2010 के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती और यही सब चाहते थे कि मेसी बैक टू बैक ना जीते और वही हुआ। वेल, फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम और आप जिस दिन अपने इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका को फीफा वर्ल्ड कप में देखेंगे उस दिन हमारी खुशियों का ठिकाना सोचिए कहाँ हो भैया। मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हम फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल पा रहे हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है कि हम 5-6 देश अगर मिलकर खेलें तो फीफा वर्ल्ड कप के बराबर क्राउड स्टेडियम में पहुंच जाएगा और सस्ती टिकट हम अपना मिनी वर्ल्ड कप लॉन्च कर दें। आइडिया दे रहे हैं, फिलहाल के लिए इतना ही कहना चाहते हैं कि आज आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एंड आज का सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, बैगवती और तीन दोस्त, ये कहानी स्पेन पे ही शूट हुई थी, बताइए कौन सी फिल्म है। बैगवती यानी कि फिल्म में तीन हीरो हैं और एक हीरोइन है बैगवती। मजाक कर रहा हूं, हीरोइन का बैग जिसे बैगवती प्यार से बुलाया गया था। क्या आपको उस फिल्म का नाम याद है? 5000 1896। मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है, वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए कि वो फिल्म जिसमें हीरो तीन और हीरोइन के बैग का नाम बैगवती होता है। अब आप अगर पूछेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा ये फिल्म स्पेन में शूट हुई थी बहुत सारे सीन इसके। अब बताइए कौन सी फिल्म है। 5000 1896 वॉइस नोट पर अपना जवाब भेजिए। संजू राठौड़ तब तक चूड़ियां लेकर आए हैं, आइए इनकी चूड़ियां वाले गाने को सुने मिर्ची पर।

0: Mirci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Iabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
2: Alo? Alo?
3: Sir, very good evening, man. Thank you for...
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
3: सर, I'm so sorry, पूरा बता दिए.
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: मैं पागल पागल है क्या?
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब
3: तो फंस गए सर.
2: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
4: जी? अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स.
7: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
8: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
9: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से.
8: योर स्पेशल ऑफर?
9: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है. ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए.
8: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
9: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है.
8: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
10: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
11: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
12: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
13: कम है के?
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

सचे टंडन परंपरा टंडन की आवाज में ये गाना आपके कानों में सुबह सवेरे मिर्ची मॉर्निंग्स पर किसने सुनाया? भले तो ही कहना चाहूंगा फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ एंड फैंस के लिए सुकून की बात थी कि वो चाहते थे कि स्पेन जीते, वो जीत गई, लेकिन वो फैंस जो चाहते थे मेसी जीते वो निराश ना हो, अब मेसी किसी और लीग में जीतेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि शायद एक आखिरी बार हमें कल वो दिखाई पड़े जब उन्होंने वो जर्सी पहनी एंड फुटबॉल खेला। वेल, बड़ी बात यह है कि एक तरफ स्पेन की 2010 विनिंग टीम के कई सारे प्लेयर्स वहां बैठे हुए थे, यस, एंड वो पूरे मैच को एंजॉय कर रहे थे जिसमें वर्ल्ड कप के उस वर्ल्ड कप के गोल जिन्होंने फाइनल में किया था एंड्रे इनिएस्टा वो भी थे, एंड ये सारे के सारे मेसी के साथ बार्सिलोना में खेले हैं, वर्ल्ड कप में खेले हैं, लेकिन इमेजिन उन सारे प्लेयर ने ले लिया रिटायरमेंट, लेकिन एक मेसी है जो खेला जा रहा है। एंड्रे इनिएस्टा जिन्होंने कल ट्रॉफी लाकर दी, उनकी एक ही बात कहना चाहूंगा, उनकी खूबसूरती वो थी कि जब उस वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल किया वो भी उस मोमेंट पर था जब दुनिया को पता था कि अब स्पेन ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवा लिया है। इस दशक में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, एंड दैट इज स्पेन, जिन्होंने साल 2010 में और फिर 16 सालों के गैप में 2026 में भी जीत लिया। बड़ी बात यह है कि हमने आज का सवाल स्पेन से रिलेटेड किया है और पूछा यह है, तीन दोस्त और उसमें एक हीरोइन के बैग का नाम बैगवती, बताइए मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के जवाब आ गए, अगली बार जवाब सुनाऊंगा। 5000 1896 5000 1896 पर अपना जवाब भेजिए कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। तीन दोस्त स्पेन जा रहे हैं घूमने और उसमें एक दोस्त की जो फियांसे है उसके बैग का नाम बैगवती है। हाँ जी, 5000 1896 पर मस्मोल और गौरव आपसे पूछ रहा है, बताइए ये कौन सी मूवी है। जितनी जल्दी हो सके वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए और अगला गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जहाँ सजना बिल्कुल मलग हो गया है। एक बार फिर से सचेत और परंपरा साथ में, इट्स हॉट।

0: Sanu Candy, ki candy? हाँ जी मस्त मौला गौरव आपके साथ सुबह सवेरे मिर्ची मॉर्निंग्स में आज कल आ रहा हूँ, क्योंकि आप फ्री छुट्टी पर हैं और ईशा आपको शाम को मिलती है। इन सब के बीच क्योंकि मैं आ चुका हूँ, सवाल भी मैंने ये किया कि स्पेन जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 खिताब पर अपना नाम दाखिल करा लिया, वो स्पेन में एक बॉलीवुड मूवी शूट हुई थी जिसमें तीन हीरो थे और हीरोइन के बैग का नाम बैगवती था, ये फिल्म का नाम क्या है?
1: हाय माय नेम इज सतीश, मूवी नेम इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: ओके सतीश जी,
2: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: ओके
2: मेरा नाम जावेद है।
0: जी जावेद भाई,
3: बैगवती एंड थ्री हीरोज,
0: द
3: मूवी नेम इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। माय नेम इज मोहम्मद मुजम्मिल खान।
0: ओके मुजम्मिल भाई, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंड इसके अलावा जो लोगों ने लिख के बताया उनके नाम भी बता दूं। हैं जी, और मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे कि वॉइस नोट भेजिएगा। त्रिशा आपने बिल्कुल सही बताया, यस इट्स जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जुलकर नैन साहब बिल्कुल सही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दानिश भाई बिल्कुल सही, आजाद भाई आजाद अंसारी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बिल्कुल सही। इसके अलावा अलका जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बिल्कुल सही। एंड साथ ही साथ सचिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ZNMD, अरे यार ये तो शॉर्ट फॉर्म मुझे भी याद आ गया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है, खालिद भाई जिन्होंने लिखा है ZNMD जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सुमित जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसके अलावा बात करें नेहा, इसके अलावा अगर बात करें तो यस नेहा जी लिखा है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। साथ ही साथ राज मोहम्मद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसके अलावा अजय जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंड बात करें तो यस योगेश भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप सबने यार 100% सही जवाब दे दिया है, ये बताता है कि बॉलीवुड में जब पकड़ की बात आए तो आपकी पकड़ कल अर्जेंटीना पर फुटबॉल की पकड़ से ज्यादा अच्छी है। मिर्ची It's hot.
4: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी। और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ड्रोन उड़ाओगे तो भाई प्रॉब्लम में भी आ पाओगे। और प्रॉब्लम में आप तब आओगे जब आप किसी चीज का वायलेशन करोगे, क्योंकि अब ड्रोन को लेकर एक बड़ी एडवाइजरी जारी हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने लॉ नंबर 10 ऑफ 2026 को पब्लिश कर दिया और ड्रोन्स यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं उनको लेकर एक बड़ा कानून। #974 अब कतर में कोई भी ड्रोन ऑपरेशन हो रहा है उसे बकायदा कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो मैनेज करेगी। उसके परमिट से ही आप ये ड्रोन फ्लाई कर पाओगे। एयर स्पेस सेफ्टी को वही मैनेज करती है, इसको ध्यान रखते हुए अगर आप किसी तरह का कोई रूल तोड़ते हो जब आप एरियल यू नो चीजों को लेकर जा रहे हो, तो एरियल व्हीकल्स पर किसी भी तरह का रूल तोड़ने पर 7 सालों तक की जेल है, यस 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और इसके अलावा 300,000 कतरी रियाल का फाइन। अगर आप कोई जनरल वायलेशन करते हैं तो 200 कतरी रियाल तक का फाइन भी आप पर लग सकता है। वार्निंग, लाइसेंस परमिट 3 महीने के लिए सस्पेंड, या फिर कंपनी और क्लब को ड्रोन एक्टिविटीज से 15 दिन के लिए बंद भी किया जा सकता है अगर कोई छोटा वायलेशन पाया गया। कुल मिलाकर ड्रोन को लेकर अब एक नई एडवाइजरी आ गई है एंड ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि अब कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी से ही आपको ये परमिट लेनी पड़ेगी और एयर स्पेस सेफ्टी को मैनेज करने के लिए जब वो आपको इस तरह की कोई भी लाइसेंस देंगे तो उस दौरान बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बताएंगे। अगर आप उसमें से कुछ भी गड़बड़ करते हो तो पेनाल्टी भरने को तैयार रहना। वेल, मुझे लगता है जब किसी चीज का कानून बनता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके ही अंतर्गत सारा काम करना चाहिए। होप यू विल अंडरस्टैंड अगर आप वो हैं जो ड्रोन फ्लाई कर अपना बिजनेस चला रहे हैं। मिर्ची थॉट,
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूँ प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: मरहबा कहर कुड़े, लेकिन मैं आ गया हूँ मुंडा नाम हैगा मस्त मौला गौरव। वेल, मिर्ची घड़ी की बात करें तो सुबह सुबह मिर्ची मॉर्निंग्स पर टाइम हो गया 8:04 के करीब का।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और कल भले ही फीफा वर्ल्ड कप का फिनाले चल रहा था, लेकिन हमारे इंडियन टीम का भी एक क्रिकेट मैच चल रहा था जो कि फिनाले था ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड का। और 8 सालों बाद इंडिया ने फाइनली इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में हार नसीब की है जी। इंग्लैंड ने इंडिया को 27 रन से हरा दिया। हालांकि इंग्लैंड में इंडिया के अगेंस्ट ये सबसे बड़ा स्कोर था, 387 रन बनाए थे और इंडिया 388 का टारगेट चेस करते हुए 360 ही बना पाया। रोहित शर्मा ने शानदार 110 बॉल्स में 138 रन लगाए। लेकिन इस मैच के असली मुजरिम कौन थे? वही थे मुजरिम जिनका नाम है गुरनूर बरार साहब। ये इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने इंडिया के बाहर सबसे ज्यादा रन देने के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। 10 ओवर का कोटा जो इनको मिला था उसमें इन्होंने 97 रन दिए विदाउट टेकिंग एनी विकेट। और इसके बाद अगर इनको लग रहा है कि ये इंडियन टीम में फिर कभी आ पाएंगे तो मुझे लगता है ये चांस इनको अब मिलने वाला है। गुरनूर बरार साहब, आपका ये छोटा सा बड़ा सा करियर हमको याद रहेगा। हाँ जी, फिलहाल इतने ही कहना चाहेंगे, इंडियन टीम ने जिस तरह से अपनी पिटाई कराई है वो शानदार थी और आखिरी 5 ओवर में तो रनों का अंबार लगा दिया गया था। वैसे यजुवेंद्र चहल साहब खुश होंगे कि उनका 10 ओवर में 89 का जो रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था वो फाइनली टूट गया और गुरनूर साहब ने 97 रन दे दिए। मतलब यार गजब के लोग हैं यार भाई। मौका मिला है 140-145 करोड़ में तुम्हें खेलने का और तुम 10 ओवर में 90 रन दे रहे हो हैं। फिलहाल टीम इंडिया को जहां हार मिली वहीं हमारे एक सपनों को फिर से थोड़ा सा टूटा हुआ पाया, जहां पर हम सोच रहे 2027 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होगा क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप वो इंडिया जीतेगी। ऐसे कैसे जीतेंगे मेरे भाई मिर्ची, इट्स हॉट। अब दाना जो है एकदम समझ लीजिए करेले पे नींद।

0: Mirchi.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virtual la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा जो
2: सोडा, हाँ खाने वाला सोडा। नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा।
2: मजाक कर रहा था।
3: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी?

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

बस एक धड़क चाहिए। क्या गाना है यार, जब श्रेया घोषाल और उनके साथ मीठी आवाज जो भी नौटियाल गाएं तो गाना इतना खूबसूरत हो जाता है। फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव आपकी सुबह को और खूबसूरत बनाएगा अगर आपको आज के आईपे रेट्स बताएगा। राइट नाउ की बात करें, एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.39 रुपए कंटिन्यू कर रहे हैं। यस 26.39 INR एट आईपे ऐप। वही एक कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज इज 92.18। पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.38 पाकिस्तानी रुपीज। वही तिमरो नेपाली रुपीज का रेट छद दाजो 42.19 को भल छ रेट रे दाई। हाँ जी, अगर हजूर हम बात करेंगे एक कतरी रियाल के बदले 42।

6.19 का बॉल जंप रेट। अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेशी टाका की बात करके था एक टाका कतरे रियाल के बदले 33.93 तो 33.93। एंड ये थे आज के आईपी एक्सचेंज रेट। घर भेज दो पैसे, ढेर सारी खुशियां, और अगर ज्यादा है तो एक महीने के लिए उधार दे दो मिर्ची।

0: आज की शाम वोका मजा पार्को में लीजिए।
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ। एंड आई नो कि कतर में वेदर जो है वो इस वक्त अपने एक्सट्रीम हॉट वाले फेज में है, एकदम जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी के साथ वॉक करना मुश्किल हो रहा है। और आप क्योंकि हेल्थ फ्रीक है, कतर में आपका इसके लिए बहुत ख्याल रखा गया है। एंड एयर कंडीशन आउटडोर पार्क्स की अगर बात करें तो ये कतर के बहुत सारे हेल्थ फिटनेस फैन के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े वॉकिंग ट्रैक मिलते हैं, दैट टू एयर कंडीशन। और ऐसे ही अब आपको कुछ याद दिलाना है, रफदत अलहमामा पार्क जहां पर अप्रोक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर बड़ा एयर कंडीशन ट्रैक है, अलगराफा पार्क जहां पर 657 मीटर लॉन्ग कूल वॉकवे, उमल सनीम पार्क यहां भी एयर कंडीशन ट्रैक बनाया गया ऑलमोस्ट 1.143 किलोमीटर। एंड ये सारे पार्क के अलावा कुछ और जहां पर ठंडक का एहसास होता है, ऑक्सीजन पार्क, ये भी आपके लिए ही है जहां पर आप जाकर अपने इवनिंग वॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि आजकल टहलने वालों की संख्या बढ़ी, यानी कि वो जो नंबर्स हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि मौसम ने जब मार मारी है तो लोगों को अपनी सुध तो आ रही है भैया, लोग एसी के सामने बैठ के ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। मैं बात करूं अगर अपनी, तो मुझे तो लगता है समर्स में सबसे अच्छा योग मैं करता हूं, शवासन। लेट जाओ और लेटे रहो और लेटे रहो और इसी के सामने ऐसा फील करो कि तुम दुनिया में सबसे तेजी से भाग रहे हो, उसैन बोल्ट से भी तेज, और फिर तुम्हें किसी तरह की कोई फिटनेस की जरूरत नहीं है। मुंह पर लगाम लगाओ ऐसी जैसे कल लगाम लगा रखी थी स्पेन ने। हाँ भाई, अर्जेंटीना स्पेन के गोल की तरफ जा ही नहीं पा रहा था, पूरा मैच तो बस और बस अर्जेंटीना के साइड हुआ है। और कल एक खिलाड़ी अर्जेंटीना का जो फिनाले में खेल रहा था वो थे मार्टिनेज, उनके गोलकीपर। उनके अलावा सब के सब ऐसा लग रहा था कि लीग मैच खेलने आए, लेकिन मार्टिनेज ने जान लगा दी। 41 गोलकीपर के लिए तो बनती है दोस्त, पिछली बार भी जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं ना, इसी मार्टिनेज की वजह से। फिलहाल तो मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है, लाइनल मेसी को हमेशा मिस तो करेगा, क्योंकि भाई फैन तो है हम हमेशा से मेसी के। मिर्ची थॉट,
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
2: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

मिल गया पहला इंश्योरेंस कंपैरिजन करने वाली कंपनी का सेटअप मिल गया। यस मस्त मौला गौरव आपके साथ, गुडी गुड मॉर्निंग। एंड कल रात अगर आप स्पेन सपोर्टर हैं तो बड़ा एंजॉय किया होगा। फिलहाल के लिए अब बारी आगे कंपेयर करने की। #974974 मैडम आपको बता दे, कतर सेंट्रल बैंक ने अमीन नाम की एक कंपनी को कतर में एस्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस दे दिया है, और ये ऑफिशियल लाइसेंस उनकी वेबसाइट के लिए मिला है जहां पर आप इंश्योरेंस प्राइस को कंपेयर कर पाएंगे। यस, इंश्योरेंस प्राइस कंपेयर कर किसका सस्ता है, किसका महंगा है, किसकी चीजें आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, इसके लिए बाकायदा कतर सेंट्रल बैंक ने लाइसेंस इशू कर दिया है और वो वेबसाइट पर अब आप इंश्योरेंस कंपेरिजन देख पाएंगे। अमीन, यस AMMEN, इस नाम की कंपनी को यह लाइसेंस मिला है और एक तरह से फिनटेक सेक्टर में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा इसमें, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्राइजेस, उनके प्रीमियम, सब कुछ आप देख पाएंगे, आसानी से कंपेयर कर पाएंगे आपकी पॉकेट में कौन वाला सूट कर रहा है कौन सा नहीं। वेल, कह सकते हैं कि QCB के अंडर कतर में टोटल 16 फिनटेक कंपनीज हैं और अब उन्हीं को सुपरवाइज किया जा सकता है, उन्हीं के थ्रू आप कंपेयर कर देख सकते हो आपके लिए कौन वाला फायदेमंद है और जेब के लिए किफायती। वैसे मस्मोलो गौरव यही कहेगा, कानों के लिए किफायती और फायदे का सौदा सिर्फ मिर्ची है हम, क्योंकि एंटरटेनर नंबर वन है भाई। अगला गाना संजू राठौड़, और लेडीज का नंबर वन इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on 98.3 Mirchi. It's hot.
2: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
3: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट। जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
2: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची हिट्स आउट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन 98.3 मिर्ची हिट्स हॉट।
4: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
5: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: Our business is our business, none of your business.
8: Par didi, our entertainment is your entertainment.
9: Qatar ka number one radio station.
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Emergency helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: जितने में वर्ल्ड कप पूरा देखे थे ना उतने में दो मैच भी नहीं देख पाते। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ। मिर्ची घड़ी का टाइम 9:03 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेल, अगर प्राइस मनी की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद भाई स्पेन की तो लॉटरी लग गई। 481 करोड़ प्राइज मनी मिला स्पेन की टीम को, और अगर मानिए 40 लोगों में बटा तो सबको 10-10 करोड़ से तो ज्यादा ही मिलने वाला है। लेकिन आई एम श्योर एक बड़ी चीज जो मैं यहां बताना चाहूंगा वो है वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट प्राइजेस के बारे में। हाँ जी, जहां हमारे पास कैटेगरी 1 कतर में देखने के लिए आपको सिर्फ चुकाने थे 5,850 कतरी रियाल, वहीं कैटेगरी 1 का टिकट यूएस मेक्सिको एंड कनाडा में हो वर्ल्ड कप का 40,123 कतरी रियाल, ऑलमोस्ट 8 times ज्यादा। वेल, अगर बात करें कैटेगरी 4 की टिकट जहां सिर्फ $205 बोले तो 750 कतरी रियाल के आसपास की थी, वहीं हमारे यूएस वाले वर्ल्ड कप में लेगी 21,220। मतलब पूरा टूर्नामेंट देख लेते ना तो भी इतना खर्चा नहीं आता जिनका इनका कैटेगरी 1 की टिकट का आया है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कतर ने सिर्फ एक सक्सेसफुल फीफा वर्ल्ड कप होस्ट नहीं किया, द मोस्ट अफोर्डेबल फीफा वर्ल्ड कप, द मोस्ट कार्बन फुटप्रिंट लेस वाला फीफा वर्ल्ड कप, और न जाने क्या क्या कामयाबी हासिल की। अब वो टाइम है जब पूरी दुनिया को ये कहना पड़ेगा कि अगले 4-5 वर्ल्ड कप कतर में ही करा दो। खैर, फिलहाल तो हम ओलंपिक्स लिए देख रहे हैं रहा, और मुझे लगता है वो मंजिल दूर नहीं जब कतर में दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का वो सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक भी अनाउंस होगा। इंतजार कीजिए दोस्त, सपने पूरे होते हैं, उन्हें बस देखने वाला चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि पंखों से बिल्कुल उड़ान नहीं होती, उड़ान होती है आपके जज्बे से, बस उसी से आगे बढ़ते जाओ। मिर्ची सुनते रहो, इट्स हॉट।

0: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो।
1: Who's this?
0: और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे Who's this?
1: कौन बोल रहा है
0: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
0: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
2: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स।
5: Enjoy 0% making charges on select tournaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
6: How's the Josh?
7: Hi sir.
6: How's the Josh?
7: Hi sir.
8: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की आवाज में जन्म जन्म क्या गाना है। कुछ चीजें जो इस वर्ल्ड कप मैच से देखी गई समझी गई इस पूरे वर्ल्ड कप एडिशन से वो ये था कि अब ना मैच के बाद 5 मिनट की बॉक्सिंग रिंग भी बनानी चाहिए और उसमें वो खिलाड़ी आपस में खेलें जिनको मैदान में लड़ने का शौक है। मतलब स्पेशली अर्जेंटीना की बात करें तो इनके खिलाड़ियों ने जब देखा कि इनकी टीम हार गई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मेसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बॉल टाइम बिग टाइम फैन हूं, पर कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा फील कराया कि जैसे गली मोहल्ले के लौंडों का मैच चल रहा, लड़ाई झगड़े हो गए, दे गुम्मे दे मुक्के चल रहे। भैया तो ऐसा करो अगली बार से रेफरी पूछ ले, जो मैच फुटबॉल का खेलना चाहते हैं वो इस तरफ आ जाए, जो मैच के बाद बॉक्सिंग करना चाहते उनके लिए हमने अलग से रिंग बनाई है। वेल, इसके अलावा वीएआर कितना ट्रस्टवर्दी है, रेफरी और अच्छा कैसे इस गेम को बना सकते हैं, मोर ट्रांसपेरेंसी, और क्योंकि दुनिया में एक ऐसा खेल जो पूरी दुनिया को एक साथ लाता है, जिस देश के लोग नहीं खेलते हैं वो भी इस खेल के दीवाने हैं, ऐसे में मुझे लगता है इस गेम को और खूबसूरत बनाना फीफा की और बड़ी जिम्मेदारी है। सो अगली बार इस बार की गलतियों से सबक लेकर कुछ और अच्छा होगा। और हम कहते हैं जैसे आपने सारे क्वालिफिकेशन बनाए हैं, 2-3 टीमों को इसलिए भी लाइए कि चलिए आपके वहां ज्यादा फैन है, आपके वहां छुट्टी दी जा रही है, आपके यहां बच्चों को स्कूल बंद किया जा रहा है, तो आप लोग भी फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो मुझे लगता है फिर हमारा इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका सब क्वालिफाई कर लेगा। मैं ये 4-5 कंट्रीज चाहता हूं कि जो क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं उनको फुटबॉल में मौका दो। मिर्ची थॉट,
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा,
9: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

जिगरा तो बहुत था, तभी तो सपना देखा और उससे अपने मुल्क को रूबरू कराया। मसपोलो गौरव आपके साथ है। और दोस्तों, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक देश की तकदीर नहीं बल्कि उसकी पहचान भी अलग कर देती है, लिख जाती है ऐसी पहचान जो पूरी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ती है। आज मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं। यस, फादर एमिर लेट हिज हाइनेस शेख हमद बिन खलीफा अल थानी सर को याद कर रहे हैं हम सब। उसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी दूरदर्शिता ने कतर को पूरी दुनिया में स्थापित किया। उनकी लीडरशिप, उनके सपनों ने कतर को एक छोटे से मुल्क से दुनिया के तरक्की पसंद मुल्कों में नंबर वन की श्रेणी पर ला खड़ा किया। कतर म्यूजियम से म्यूजियम इस्लामिक आर्ट, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, मताफ और 321 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम में एक कॉन्डोलेंस बुक रखी है, जहां पर वो चाहते हैं कि हर रेसिडेंट, हर विजिटर अपनी दुआएं, अपनी यादें, अपने एहसास को लिख सके। वो फादर एमिर के लिए क्या सोचता है उसके बारे में जरूर लिखे। और मुझे लगता है कि ये मौका है कि कभी कभी ना जो हम शब्दों से बयां करना चाहते हैं उसके लिए एक सही किताब मिलनी चाहिए, और वो किताब मिल गई है। आप उनके लिए जो आपकी मोहब्बत है, आप उन्हें शुक्रिया करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए मायने रखता है वो शब्द जरूर जाकर उस किताब में लिखें। अगर आप भी उनकी इस विरासत को सलाम करना चाहते हैं तो ये मौका है आपके पास। कतर म्यूजियम, म्यूजियम इस्लामिक आर्ट, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, मताफ और 321 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम में ये जो कॉन्डोलेंस बुक रखी है, आप उसमें संदेश लिख सकते हैं। वो पैगाम जरूर छोड़िए जो आप उनके जाने के बाद भी जिंदा रखना चाहते हैं अपनी सोच से बाहर किताबों में। उनकी सोच, उनकी मेहनत, उनका असर हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये मौका आया है जब हम उनके लिए दो शब्द लिख पाएं। और आप अगर अगली बार इन जगहों पर जा रहे हैं तो जरूर इस कॉन्डोलेंस बुक में अपना संदेश लिखिएगा और अपनी बातें छोड़कर आइएगा। 89.6 मिर्ची 1 कतर यूं ही जिंदगी भर तरक्की करे, यही हम सबकी दुआएं।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
1: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैलेट सर्विस दे रहा है यार वो।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
4: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: जुबिन नौटियाल ने गा दिया ये गाना और अब हमारी आपकी कल तक की कुट्टी 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। कल रात जब हम सब ने फीफा वर्ल्ड कप फिनाले देखा तो हमें लगा था कि एक शानदार मैच देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से डोमिनेट किया स्पेन की टीम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप फिनाले को। मेसी और मेसी के बाकी 10 खिलाड़ी लगातार स्ट्रगल करते रहे, फिर बीच में एक रेड कार्ड मिला इनो फर्नांडिस को। 10 खिलाड़ियों के साथ मेसी की टीम स्ट्रगल ही करती रही एंड फाइनली गोल होने के बाद लोगों ने यह कहा कि अब नहीं लगता कि यहां से कोई वापस आ रहा है। बिल्कुल मिलाकर स्पेन दोबारा वर्ल्ड कप चैंपियन बना 16 सालों के गैप में एंड फर्स्ट टीम इन द 21st सेंचुरी टू विन इट ट्वाइस एंड आई होप आगे उनका यही गेम दिखने को मिलेगा। एक लेगेसी थी जो मेसी छोड़कर जा रहे हैं और लामिन यमाल अब उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद ना हमें अब नजर आने वाले हैं रोनाल्डो, ना नेमार, ना मेसी, तो नए सितारे कौन होंगे? एम्बापे, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टेप अप एंड बिकम अ रियल गोट। वेल, उम्मीद यही है कि हम जिस मैजिक को देखते आए हैं फुटबॉल का, वो मैजिक हमेशा कंटिन्यू करेगा एंड फीफा और बहुत सारी मिस्टेक्स को सुधार कर अगली बार और फिर वर्ल्ड कप लेकर आएगा। इसी उम्मीद से कि सब कुछ आने वाले टाइम में ठीक रहेगा। फिलहाल आप पानी पीजिए, क्योंकि मौसम का जो तापमान है वो एक बार फिर से बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। यस, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बार फिर से हमारा कतर का जो सबसे हॉट सीजन है वो चल रहा है एंड ऐसे में आपको और अपने आप को बहुत ख्याल रखना है। आपको हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे विल गो अराउंड 44, मिनिमम विल कर अराउंड 32, ह्यूमिडिटी का परसेंटेज काफी ज्यादा है जहां पर आपको पानी पीते रहना है एंड हवाओं की बात करें तो ये बड़े कम रफ्तार से चल रही है। दिमाग मत लगाइए, पानी पीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए। मिर्ची इट्स हॉट, टाटा बाय, मिलते हैं कल सुबह।
1: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: अगर हर इंसान अलग होता है तो उसकी चॉइसेस भी तो अलग होंगी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, लेकिन यार इसी चीज को लेकर तो अक्सर लोग सामने वाले को जज कर लेते हैं, और बस इसी चक्कर में कि भाई ये जजमेंट मेरे ऊपर ना आए, बहुत सारे लोग अपने चॉइसेस के बारे में वोकल नहीं हो पाते, एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट। इसलिए आज मैं हमारे गिल्टी प्लेजर की बात करना चाहती हूँ। बहुत सारी फिल्में ऐसे होती हैं जो एट मेजर लोगों को पसंद ना आई हो, बट कुड बी योर गिल्टी प्लेजर। फॉर मी इट इज, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। बनी बनी बनी बनी प्रेम दी, मतलब बहुत सारे मोमेंट्स हैं इन द मूवी विच आई डेफिनेटली एंजॉय एवरी सिंगल टाइम आई वॉच इट। तो एक काम करेंगे, आज के शो पे हम आपके गिल्टी प्लेजर की जानकारी लेना चाहेंगे। बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। अभी करते हैं शो की शुरुआत। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: vidva la burka. Milci, burka. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है. मिर्ची मुर्गा. हेलो. हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था?

0: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
0: आई एम सो सॉरी सर, मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने, उससे कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
0: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल पागल है,
0: अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
0: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
0: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: पागल है कि दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
0: अब तो फंस गए सर।
1: हेलो
0: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
0: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
0: जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने, हिट गाने। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: इलेक्ट्रिक गिटार पे क्लासिकल म्यूजिक को भी एंजॉय किया है मैंने।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बनी बनी बनी रे बनी, प्रेम दीवानी बनी, अब क्या करे दिल दीवाना है। एक सच्चे फिल्मची ने समझ लिया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, स्टारिंग करीना कपूर खान, ऋतिक रोशन एंड ऑफ कोर्स अभिषेक बच्चन एज द मेन लीड्स ऑफ द फिल्म। बट इस मूवी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों ने ऐसा मुंह नाक बनाया होगा ना, आए हाय ये फिल्म भी पसंद आ सकता है किसी को। हाँ आता है, एंड दैट इज व्हाई मैं इसको अपना गिल्टी प्लेजर बोलती हूँ। और आपसे भी आज जानने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई आपका गिल्टी प्लेजर कौन सी फिल्म है। सो निमिषा इज विद मी, बताइए बेबी।
3: हे बेबी।
0: अच्छा,
3: बिकॉज आई डोंट नो यार, मतलब आई थिंक द कैरेक्टर्स, द बेबी, आई थिंक आई कैन वॉच इट 10,000 मोर टाइम्स। आई लव इट।
0: क्या बात है। हे बेबी इफ यू डोंट नो 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय साजिद खान, जिसमें अक्षय कुमार, फरदीन खान और रितेश देशमुख के साथ साथ विद्या बालन लीड रोल्स में नजर आई थी। एंड नॉट टू फॉरगेट टू मेंशन, ये फिल्म 1990 में आए मलयालम फिल्म थूवल स्पर्शम से इंस्पायर्ड है। इट इज अ रीमेक बेसिकली, एंड थूवल स्पर्शम वाज आल्सो अ रीमेक 1987 की अमेरिकन फिल्म थ्री मेन एंड अ बेबी से, जो एक और फिल्म जो 1985 में आई थी विच वाज अ फ्रेंच फिल्म थ्री मेन एंड अ क्रेडल की रीमेक थी। तभी मैं कहती हूँ अपनी पसंद को लेकर वोकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: भाई हम तो अपनी मम्मी के स्पाई भी थे और इंस्टेंट डिलीवरी पार्टनर्स भी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बिट्टी उन्होंने आप और एक 90s किड ने इस बात से इतफाक जरूर रखा होगा मेरी, क्योंकि हम अपनी मम्मियों के लेजिट इंस्टेंट डिलीवरी पार्टनर्स हुआ करते थे। याद है आपको, जैसे ही कोई मेहमान आए वैसे ही मम्मी हमें 20 रुपए पकड़ा के बोलती थी, अरे जाओ जाओ किराने की दुकान से ये सामान ले आओ वो ले आओ एंड फलाना ढिमकाना। सिर्फ इतना ही नहीं, हम तो मम्मियों के स्पाई भी बन जाते थे। कहां लोग दूसरे मुल्क जाके स्पाइंग कर रहे हैं अंडरकवर होके, हम तो अपने घर में ही ये काम कर रहे थे। क्योंकि मान लो घर पे कोई गेस्ट आया और उनके साथ और बहुत सारे लोग भी एड इन हो गए, अब मम्मी लिटरली जाकर वहां पे उनसे बात करते करते उनके नंबर्स नहीं गिन सकती, इसलिए हमें बोलती थी सुनो जरा झांक के देखना कि पापा के कितने दोस्त आए हैं। और हम पर्दे के कोने से 1 2 3 4 मम्मी 5 लोग हैं टोटल, अरे नहीं नहीं 6 लोग हैं टोटल। Remember? यार, those were the best days of my life. इतनी सिंपल जिंदगी, काश कि हम वापस उस वक्त में जा पाते। बट ऐसा तो सिर्फ यादों में हो सकता है ना। वैसे ऐसी कुछ यादें अगर आप भी मुझसे शेयर करना चाहें तो मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। Till then, stay tuned to मिर्ची, it's all.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ, ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची।
1: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: महफिल, और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग बाबू मोशाय
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय। सो ये वाली जो दो प्रजातियां हैं वो डिसाइड की जा रही हैं मैनेजर्स के मद्देनजर। ओहो हो, कान खड़े हो गए सारे एम्प्लॉयज के तो सुनो। फिर पहली प्रजाति का जो मैनेजर है ना, ये लेजिट प्यारा सा मैनेजर है हा? जो अपनी टीम को बहुत अच्छे से चलाता है। अगर इसको अपनी टीम से कोई शिकायत है तो उसको अच्छे से सामने रखेगा, उस शिकायत के ऊपर सबके इनपुट्स भी लेगा, और फिर जो इनपुट आया उसके ऊपर बजाबते काम करेगा भी, करवाएगा भी। मतलब अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तक पहुंचाएगा, ये टीम वर्क। लेकिन जो दूसरी प्रजाति के मैनेजर्स हैं, इनको इनके मैनेजर्स ऊपर से आउटपुट देते हैं इनके इनपुट ऑफ वर्क का, और फिर ये सीधे से उस आउटपुट को अपने सारे एम्प्लॉयज पे डंप कर देते हैं। हाँ भाई, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुमने ये नहीं किया, ऐसे करना है, वैसे करना है, एंड व्हाट नॉट। बट प्रॉब्लम मेंशन करने के अलावा इनका कोई काम नहीं होता। सोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़े ये खुद नहीं समझा सकते अपनी टीम को, इनकी टीम क्या ही कर पाएगी। एनीवे, आप इन दोनों में से किस मैनेजर के छत्र छाया में हो, डू लेट मी नो अबाउट दैट। 9930983983 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: खोपड़ी।

0: एक्सपायर हुआ तो डरना क्या।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
2: यार, लोग एक्सेप्ट करने में बिलीव क्यों नहीं करते? मतलब जो किया है उसको एक्सेप्ट कर लो यार। वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें ना, तो बहुत सारी फिल्में ऐसे आई हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिल्म से या शो से इंस्पायर्ड रही हैं, या फॉर दैट मैटर रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड रही हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर मूवी के जो डायरेक्टर साहब रहे हैं, ही और शी हैज एक्चुअली डिनाइड टू द फैक्ट। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों की, कुछ शोज की चर्चा कर रही हूँ जो हमारे नजर में तो इंस्पायर्ड है लेकिन डायरेक्टर साहब ने डिनाई कर दिया। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट द मूवी राजनीति, देन वील टॉक अबाउट वो लम्हे, नंबर तीन पे बात करेंगे फिल्म आंधी के बारे में, उसके बाद शो फर्जी की बात होगी, एंड देन फाइनली नंबर पांच पे डिस्कशन होगी फिल्म गुरु की। सो लेट्स बिगिन विद राजनीति, डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा, जो साल 2010 में आई थी, जिसमें रणबीर कपूर, अजय देवगन, प्रकाश झा, अर्जुन रामपाल, कटरीना कैफ, मनोज बाजपेयी, नाना पाटेकर और नासिरुद्दीन शाह जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। एंड दिस पॉलिटिकल थ्रिलर रिवॉल्व अराउंड द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन राइवल पॉलिटिकल फैमिलीज एंड पार्टीज। इवन दो प्रकाश झा जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भैया कटरीना कैफ का कैरेक्टर जो है वो पूरी तरीके से फिक्शनल है, बट सेवरल रिपोर्ट्स मेंशन दैट कटरीना कैफ ने सोनिया गांधी का किरदार निभाया था और ये कहानी पूरी की पूरी इंस्पायर्ड थी बाय द गांधी फैमिली। वैसे आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या सोचते हैं फिल्म राजनीति के बारे में, वो मुझे जरूर बताना। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से 1 बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पक्का।
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, स्टेशन
9: 89.6
4: FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: रियलिटी एक्सेप्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: और ये हम इंसानों से बेहतर और कौन ही समझ सकता है यार बाबू मोशाय। लेकिन अगर बात करें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, तो बहुत सारे शोज, बहुत सारी मूवीज ऐसी रही हैं जो या तो किसी दूसरी मूवी से इंस्पायर्ड रही हैं या फॉर दैट मैटर रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड रही हैं, लेकिन फिल्म के कर्ता धर्ता जो मेकर्स रहे हैं दे हैव डिनाइड टू द फैक्ट। तो आज मैंने सोचा पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी ही फिल्मों, कुछ शोज की चर्चा करूं जो मेरे हिसाब से तो इंस्पायर्ड रहे हैं यार। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी राजनीति। नंबर दो पे आप बात करते हैं फिल्म वो लम्हे के बारे में, जिसको महेश भट्ट ने 2006 में डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में शाइनी आहूजा एंड कंगना रनौत लीड रोल्स में थे। टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, इट वॉज अ रोमांटिक ड्रामा जो सेंटर्ड थी एक स्किजोफ्रेनिक एक्टर एंड उसके लवर के बीच में। अपेरेंटली कहते हैं The movie is based on the life of Parveen Babi, which also showcased her connection with Mahesh Bhatt, who was both a lover and a mentor to her before she died due to multiple organ failure. Lekin महेश भट्ट साहब खुद इस बात को डिनाई करते हैं आज भी। फिलहाल लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म आंधी की, जो 1975 में रिलीज हुई थी एंड इट वाज एन इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा जिसमें सुचित्रा सेन और संजीव कुमार लीड रोल्स में थे। बाकी आपको बता दूं ये फिल्म डायरेक्ट की थी नॉन अदर देन गुलजार साहब ने। एंड अलेजेडली द फिल्म वॉज बेस्ड ऑन इंदिरा गांधी एंड हर एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड फिरोज गांधी। वैसे इस फिल्म को गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था एज सून एज इट रिलीज्ड। तो इसलिए मैंने कहा रियलिटी को एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है बाबू मोशाय। वैसे आप इन फिल्मों के बारे में क्या राय रखते हैं, डू लेट मी नो अबाउट दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: सच तो हमेशा कड़वा ही होता है।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड माय डियर बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो सच से थोड़ी दूर दूर सी भी रहती है, मतलब नॉट ऑलवेज ऑफ कोर्स, बट कई दफा ये हुआ है कि बहुत सारी फिल्में जो हैं वो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड रही हैं, या फॉर दैट मैटर कुछ अलग फिल्मों से या शोज से इंस्पायर्ड रही हैं, बट उस पर्टिकुलर फिल्म या शो के मेकर ने इस बात को डिनाई किया है, इस सच को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू इस सच का सामना आपको भी करवाऊं। सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी राजनीति। नंबर दो पे हमने बात की फिल्म वो लम्हे के बारे में। नंबर तीन पे आंधी की डिस्कशन हुई। अब नंबर चार पे बात करना चाहूंगी शो फर्जी के बारे में, जो साल 2003 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजन डी के, जिसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, भुवन अरोड़ा और के मेनन लीड रोल्स में थे। वैसे ऑल इन ऑल ये कहानी क्या थी? एक आर्टिस्ट की कहानी जो पैसे बनाने के लिए अपने टैलेंट का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, राइट? एंड इफ यू थिंक यू हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर, देन लेट मी रिमाइंड यू, ब्रेकिंग बैड देखी है या नहीं आपने? वहां भी तो यही कांड चल रहा था। वेल, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ पा रहा है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच ब्रेकिंग बैड फर्स्ट एंड देन फर्जी से इस सीरीज को कनेक्ट करने की कोशिश करना। फिलहाल तो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर पांच पे फिल्म गुरु के बारे में, जो मनी रत्नम की पेशकश थी इन द ईयर 2007, जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय लीड रोल्स में थे, अलोंग विद मिथुन चक्रवर्ती, आर माधवन एंड विद्या बालन। वैसे ये कहानी फोकस्ड थी ऑन अ विलेजर जो एक बिजनेस टाइकून बन जाता है, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट टाइकून्स इन द कंट्री। इंटरेस्टिंगली द मूवी वॉज र्यूमर्ड टू बी बेस्ड ऑन धीरू भाई अंबानी, हाउएवर मनी रत्नम ने बोला कि भाई ये सारे क्लेम्स जो है ना वो बकवास है एंड दिस मूवी इज अ fictional story. Nevertheless, there were some striking similarities between the tycoon and the film. लेकिन क्या करें, सच कड़वा होता है बाबू मोशाय, जिससे लोग दूर ही भागना चाहते हैं। वैसे आपकी क्या राय है इन मूवीज और शोज के बारे में? डू लेट मी नो अबाउट दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कसम से बादल देख के मैं तो मोर बन जाती हूँ।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: ये गलत गलत डायरेक्शन में आपके थॉट्स क्यों चले जाते हैं यार, हर बार लगातार बार बार गलत है ये, गलत है। ओके चलिए, मैं बात कर रही हूँ बारिश में पाए जाने वाले दो कैटेगरी ऑफ पीपल की, बेसिकली बारिश लवर्स की, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो बिल्कुल मेरे जैसा है, एकदम से बारिश पगलू, मतलब बादल दिखे नहीं कि इनके अंदर का मोर जाग जाता है और ये जलबिन मछली भी बन जाते हैं, और उसके बाद तो भाई समोसे भी खाने हैं, पकौड़े भी खाने हैं, चाय भी पीनी है, और बारिश में अगर भीगने का मौका मिल गया तो ओहो RSTDM का वो लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन ही रिक्रिएट करना है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ बारिश लवर्स हैं, OMG, भगवान ने क्यों ही इनके अंदर ये बारिश प्रेम भरा है, क्योंकि भाई इनको ना बारिश दूर से पसंद है, मतलब अगर बाहर बारिश हो रही है या अंदर बैठे हो कंफर्टेबल अपने घर पे और गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ साथ चाय की चुस्की मार रहे हो, तब तक ही बारिश अच्छी लगती है। अगर इनके बालकनी में थोड़ी गंदगी हो गई तो इरिटेट हो जाएंगे, अगर इनको बारिश में कहीं निकलने को बोल दिया जाए तो इरिटेट हो जाएंगे, ऐसे किच किच किच किच वाली फीलिंग आ जाती है इनको। तो बताइए फिर आप इन दोनों में से कौन से पगलू हैं? मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूँ प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।

पर्सनल लाइफ आ गई इनके प्रोफेशनल लाइफ के बीच। इतना प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। ओके डोंट किल मी फॉर दैट, बट एक्चुअली इसी फिल्म की बात हो रही है, राजा हिंदुस्तानी, जो 1996 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय धर्मेश दर्शन, जिसमें आमिर खान और करिश्मा कपूर लीड रोल्स में थे। सो करिश्मा कपूर का जो किरदार है वो पहले उनको नहीं मिला था, सबसे पहले ये किरदार गया था पूजा भट्ट के पास, लेकिन क्योंकि आमिर खान ने कुछ टाइम पहले उनसे ब्रेकअप किया था, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर साहब को बोला कि भाई किसी और को ले लो ना। उसके बाद फिर दर्शन जी अप्रोच करते हैं जूही चावला को और ऐश्वर्या राय को, बट जूही के साथ भी आमिर की कुछ अनबन थी और ऐश्वर्या उस वक्त मूवीज में इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसके बाद फाइनली ये रोल करिश्मा कपूर को गया। एंड नॉट जस्ट दैट, इस मूवी का जो एपिक गाना है ना, परदेसी जना नहीं, वो एक्चुअली सैंपल किया गया है एक रशियन सिंगर के गाने से, जिनका नाम है एजिस उस्ताता, और इनका गाना था टॉकनो सेगा। यकीन नहीं होता तो जरा गौर फरमाइए। और अब जरा राजा हिंदुस्तानी के इस गाने को सुनिए।

अब दोनों गानों में एक रिजेम्बलेंस समझ आई आपको? बस इसीलिए कहती हूँ कि बड़े पर्दे पे जो आप कहानी देखते हैं उसको बनाने में कई सारी छोटी छोटी कहानियां बुनी जाती हैं, और वही कहानियां मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: यप पटा।
7: हाउ इज द जोश?
8: हाय सर।
7: हाउ इज द जोश?
8: हाय सर।
9: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
10: बैक टू बैक।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM Mirchi 1. It's hot.

0: and it's time to find Mirchi for Lumchi.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: Main toh badi filmi hoon.
0: Mirchi pe tuned in ho aap, and if you're listening to me for the first time, then let me remind, abhi ka jo session hota hai, wo Mirchi for Lumchi dhoondne ka hota hai, jahan main aapse request karti hoon to go to my Instagram and DM karo apna number, taki main aapko call karke ye filmi game khel sakun. So aaj hamare saath sabse pehle telephone line pe hain Himanshu ji. Shuru kare?
3: Bilkul, bilkul, bilkul.
0: ओके तो मेरा पहला सवाल ये है कि सलमान खान की फिल्म जिसमें उनका एक डायलॉग है, चलती है क्या 9 से 12?
3: चलती है क्या 9 से 12? ये तो जुड़वा.
0: ग्रेट. जुड़वा में माला का रोल किसने प्ले किया है?
3: माला का रोल वो करिश्मा कपूर.
0: ग्रेट. करिश्मा कपूर की फिल्म जिसमें वो डांसर बनी है?
3: ये शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित वाली.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
3: दिल तो पागल है.
0: बहुत ही बढ़िया. दिल तो पागल है में डांस ग्रुप के डायरेक्टर कौन होते हैं?
3: शाहरुख खान.
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो 6 दिन में लड़की इन करवाते हैं?
3: वो सैफ अली खान और प्रीति जिंटा वाली.
0: हाँ हाँ.
3: कल होना हो.
0: बहुत ही बढ़िया. कल होना हो की नैना कौन है?
3: प्रीति जिंटा.
0: प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें वो आरजे बनी है और प्रेग्नेंट हो जाती है?
3: सेम अगेन सैफ अली खान के साथ है.
0: कोई बात नहीं, बट इतना अच्छा जो गेम यहाँ तक कंटिन्यू किया है आपने, उसके लिए आपको ये टैग मिलना तो बनता है मानशु जी.
1: मिर्ची फिल्म जी.
0: माई डियर फ्रेंड, अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल. मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर सेंड कीजिए एंड रेस्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? जेसीबी से।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: चलो आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड ये चीज तो मुझे समझ में आ गई है यार कि हर हिंदुस्तानी जो है उसके अंदर एक फिल्मी कीड़ा जरूर छुपा होता है जिसको निकालने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। सो ऑन अ डेली बेसिस मैं यहाँ पे दो मिर्ची फिल्मची ढूंढती हूँ। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं और ये गेम शुरू कर सकूं। आज के गेम की शुरुआत हुई थी हिमांशु जी से, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए कौन है मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे?
3: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, किससे बात हो रही है?
3: दिनेश सिंह बात कर रहा हूँ मैम।
0: दिनेश जी, गेम शुरू करें आपके साथ ही आगे।
3: यस मैम, यस।
0: ओके, प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें वो आरजे हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
3: मैम सलाम नमस्ते।
0: बहुत बढ़िया, सलाम नमस्ते के मेल लीड कौन है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान किस फिल्म में लंगड़ा त्यागी बने हैं?
3: ओमकारा।
0: ओमकारा में करीना के हस्बैंड कौन है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की किस फिल्म में उनका नाम गोपाल है?
3: गोलमाल रिटर्न, गोलमाल मतलब गोलमाल सीरीज है।
0: बहुत बढ़िया, गोलमाल में अंधे दादाजी कौन बने हैं?
3: परेश रावल मैम।
0: परेश रावल की फिल्म जिसमें वो स्टार गराज चलाते हैं?
3: हेरा फेरी। हेरा फेरी
0: हेरा फेरी में राजू कौन बना है?
3: राजू भैया, अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार को किस फिल्म में डॉन की बहन से प्यार हो जाता है?
3: वेलकम।
0: वेलकम में घोड़े के ऊपर गधे की पेंटिंग कौन बनाता है?
3: मजनू, वो अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर की फिल्म जिसमें वो एक दिन के सीएम बने हैं?
3: नायक।
0: नायक में करप्ट सीएम का रोल किसने प्ले किया है?
3: वो अमरीश पुरी।
0: अमरीश पुरी की फिल्म जिसमें वो सिमरन को जिंदगी जीने के लिए बोलते हैं?
3: डीडीएलजे।
0: डीडीएलजे में भाग के ट्रेन कौन पकड़ता है?
3: काजोल। काजोल
0: काजोल को किस फिल्म में दिखाई नहीं देता?
3: फना।
0: फना में टेररिस्ट कौन बना?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान एलियन किस फिल्म में बने?
3: पीके।
0: पीके में जर्नलिस्ट कौन है?
3: अनुष्का शर्मा।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, मजा आया आपको?
3: यस मैम, मैं तो बहुत एक्साइटेड था मैम, कब विनर बने।
0: तो लीजिए आप विनर बन गए और इसी के साथ आपको ये टैग भी दे देते हैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: सच सच बताना, आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी ऐसे से कुलमुला गया ना इस गेम को सुन के, तो एक काम करो, कल से इस गेम का हिस्सा बनने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे अभी जाओ और मुझे अपना नंबर भेज दो। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
2: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए?
3: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
2: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
1: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भाई हमारी जिंदगी में चल रहे हर प्रॉब्लम की जिम्मेदारी हम दूसरों के मत्थे तो नहीं मर सकते ना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई बार होता है कि हम ना कुल्हाड़ी पे पैर खुद दे मारते हैं, या कुल्हाड़ी कहीं किसी कोने में होगी और हम जाके उस पे छलांग लगा देंगे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई नेगेटिविटी है और आपको लगता है कि यार इस सामने वाले की वजह से ये हो रहा है, बट हेलो, सामने वाला उस लेवल तक आपको इसलिए लेकर गया क्योंकि आपने उसको वो पोजिशन दी, राइट? आपने उसको वो स्पेस दिया कि ओके फाइन, कीप हर्टिंग मी, और तब जाके आपका गुमार जो है ये गुस्से का वो फूटा, एंड देन यू took a step back from the person. इसीलिए healing also means taking responsibility for the role you play in your own suffering. बाकी तो समझदार को इशारा काफी यार. On that note, this is me, Shruti Singh. Bye-bye. Till then, stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: बस यार ऐसे ही मिलियनेयर बन गए पूरे के पूरे स्पेन के खिलाड़ी।
1: मस्त मौला गौरव।
0: कर फीफा वर्ल्ड कप जीतते ही 481 करोड़ इंडियन रुपीस हाथ लगे। फिलहाल जो जीत गया उसके लिए तो सब माला माल, जो हार गया वो भी माला माल हुआ है भाई, उससे थोड़े ही कम पर मिले तो अर्जेंटीना को भी है। पर हमारी जेब में जितने उनके क्या मिल रहे हैं रेट्स बता रहे हैं आई पे। एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.40 रुपए है, 26.40 INR। वही 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 92.18। अगर बात करें जनाब पाकिस्तानी रुपीज की, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.38 पाकिस्तानी रुपीज। और अगर हम तपाईको नेपाल रुपीज का रेट को बात करके दाई, 1 कतरी रियाल के बदले 42.25 का भल्छ रेट रे भाई। हाँ जी दाजो 42.25 नेपाल रुपीज का रेट छ। अगर इसके बाद बंधु बांग्लादेशी टका पे आएगा दादा, 1 कतरी रियाल के बदले 33.93 तो 33.93 आई बांग्लादेशी टके तो रेट छिलो। मस्त मोलोग्राफ के साथ मिर्ची पे एंटरटेनमेंट का जखीरा है, लूटते रहो, इट्स हॉट।

0: Mirci Helpline?
1: या मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है हु?
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए, व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा? हु? हु? तो खुद डिसाइड कर।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: सुबह के 6:30 बज रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है। मामा ने बोला है कि बारिश बहुत है तो आज स्कूल नहीं जाना है। उफ, ये फील फिर से जीने का दिल करता है।
1: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और वाकई में यार, वो दिन भी क्या दिन थे जब ऐसी हसीन सुबह भी हुआ करती थी सावन के मौसम में, जब सुबह उठते थे बाहर बारिश बहुत तेज हो रही होती थी और मम्मा डिक्लेयर कर देती कि नहीं नहीं नहीं आज तो बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा लगता था कि यार ये क्या, ऊपर वाले ने हमारे ऊपर बारिश की रहमत तो बरसाई बरसाई, ऊपर से स्कूल की छुट्टी की रहमत भी बरसा दी, यानी कि एक रहमत के साथ एक रहमत बिल्कुल मुफ्त। और फिर बाकी का दिन बड़ी तसल्ली से तफरी में कटा करता था यार। हम सीधे बेड पे बैठ जाया करते थे, टीवी स्विच ऑन करते थे, कार्टून नेटवर्क से हमारी सुबह और जिंदगी की शुरुआत हुआ करती थी, और फिर मम्मा नाश्ता बनाकर लाती थी, पलंग पे बैठकर हम नाश्ता कर रहे होते थे, कार्टून नेटवर्क देख रहे होते थे और इस बात की खुशी मना रहे होते थे कि आज स्कूल की छुट्टी और होमवर्क भी नहीं करना है, क्योंकि कल का होमवर्क तो ऑलरेडी आज के लिए हमने कर लिया था ना, अब आज तो कोई नया होमवर्क मिलने भी नहीं वाला है। मम्मा भी नहीं डांटती थी कि टीवी मत देखो सुबह उठते के साथ ही, क्योंकि सुबह उठते के साथ अगर टीवी ना देखते तो क्या करते, बाहर तो बारिश हो रही थी ना, खेलने तो जा नहीं सकते थे, होमवर्क था नहीं तो करते ही क्या। लेकिन हाँ, दिन चढ़ते चढ़ते एक टाइम ऐसा भी आता था जब मम्मा कहती थी कि अब किताबें खोल के बैठ जाओ। शायद वो मम्मा के दिल की तसल्ली के लिए हुआ करता था कि होमवर्क नहीं भी है तो बच्चे किताबें खोल के तो एटलीस्ट बैठ जाएं। पेरेंट्स को भी आई थिंक कहीं ना कहीं गिल्ट होता ही है ना कि बच्चों को कुछ ज्यादा ही मस्ती नहीं मारने दिए। बट एनीवेज, वो दिन भी क्या दिन हुआ करते थे। आए हाय, मुझे ना वो कुछ चंद घंटों के लिए किताबें खोलना भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये जो छुट्टी की रहमत बारिश की रहमत के साथ मुफ्त आती थी ना, वो बड़ी सुहानी लगती थी। ये फील ही कुछ और होता था यार, जो स्कूल के जमाने के बाद तो कहीं चला ही गया। जब से डिसीजन मेकिंग हमारे हाथों में आ गई है कि छुट्टी लेनी है तो हमें ही लेनी है, लीव लगानी है तो हमें ही लगानी है, काम करना है तो हमें ही करना है, नहीं करना है तो भी हमें ही करना है, क्योंकि आज नहीं किया तो कल तो करना ही पड़ेगा। उफ, ये अडल्टिंग भी ना अच्छे सुहाने ख्वाब को न जाने कैसे तार तार कर देता है, नहीं क्या। चलो फिर चलते हैं यार वापस से उसी जमाने में जो कि 90 का दौर है। तो 90s की गियर में गाड़ी को डालती हुई मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iscabana, puscabana, sacabana. Iabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसिल है। एक प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल होना चाहिए।
2: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इरशाद
5: अर्ज किया है।
6: इरशाद इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
2: 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yeah, 90s के दौर में एक बड़ी क्यूट सी फिल्म आई थी. फिल्म का नाम था अंजलि. और इस फिल्म का ये गाना, अंजलि अंजलि अंजलि हमारी आंखों का तारा अंजलि. याद है आपको ये फिल्म?
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड लॉन्ग बिफोर तारे जमीन पर या सितारे जमीन पर जैसी फिल्में आई, दिस फिल्म वॉज मेड बाय मनी रत्नम, हु वर्क्ड ऑन अ मूवी टॉकिंग अबाउट स्पेशल नीड्स किड्स, जिस टॉपिक को 90s के दौर में किसी ने नहीं छुआ था. एंड अंजलि वॉज अमंग द फर्स्ट इंडियन मेन स्ट्रीम फिल्म जो की एक ऐसे बच्चे के ऊपर बनी थी हु हैड मेंटल डिसेबिलिटीज, और जिस फिल्म ने ऑटिज्म जैसे डेवलपमेंटल डिले के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी थी, विच वॉज अ वेरी वेरी रेयर थिंग इन दोज डेज. हाँ, इस फिल्म की जो लीड थी, यानी कि वो जो छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर ये फिल्म का टाइटल रखा गया था, हर रियल नेम वॉज बेबी शामिली. और इस बच्ची की उम्र पता है क्या थी जब उसने ये अंजलि का रोल प्ले किया था? शी वॉज जस्ट 2.5 years old. कैन यू जस्ट इमेजिन, इतनी छोटी सी बच्ची ने अपने कंधों पर पूरी फिल्म चलाई है. और यही वजह थी कि बेबी शामिली इवेंचुअली गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड.

0: आर्टिस्ट फॉर हर रोल, जिसकी वजह से शी बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट रिसिपिएंट्स एवर। और आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस फिल्म की कास्टिंग किस बेसिस पे की गई होगी। वेल वेरी इंटरेस्टिंगली, मणिरत्नम सर वॉन्टेड टू कास्ट रियल स्पेशल चाइल्ड, लेकिन फिर रोल इतना कॉम्प्लेक्स था कि उस स्पेशल चाइल्ड से वो एक्टिंग करवाना, वो इमोशंस निकलवाना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से उन्होंने काफी सारे टॉडलर्स के ऑडिशंस लिए बिफोर दे सिलेक्टेड बेबी शामिली। एंड इस फिल्म को शूट करने के लिए कहा जाता है कि मनी सर ने काफी सारे हिडन कैमरास का इस्तेमाल किया सो दैट वो जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उनके नेचुरल मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए, क्योंकि यार बचपन तो बड़ा मासूम होता है ना। आप उनको एक्टिंग के दाव पेच सिखाओगे ना तो वो नेचुरल मासूमियत जो है वो निकल कर नहीं आएगी, जो कि वो तब कैप्चर कर ली जाए जब वो निकल कर आए। और कितने सारे तो ऐसे सीन्स थे जिनको की शूट करने के लिए सिर्फ सिंगल टेक्स लिए गए थे ताकि बच्चों की स्पॉन्टेनिटी जो है वो मेंटेन रहे। यानी कि पहला टेक जैसा भी गया है लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो मासूमियत और स्पॉन्टेनिटी थी विच वॉज रिक्वायर्ड ऑन स्क्रीन, तो उस टेक को वैसा का वैसे ही रहने दिया और रीशूट नहीं किया। आई थिंक शायद इसी वजह से ये मूवी हमें इतनी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर वाकई में इतना ऑर्गेनिक इमोशन शामिल है कि जब हमने ये फिल्म देखी तो हम खुद भी रो दिए। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं रोए थे, सेट पर कई सारे लोग रोए थे, जिनके बारे में बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैंने जब ये फिल्म देखी थी ना अंजलि, मैं बहुत छोटी थी यार, और मुझे आज भी याद है कि इस फिल्म को देखकर मैं इतना रोई हूँ और इतना इमोशनल हुई हूँ कि मुझे उस ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई थी, और मैं इतनी इनक्विजिटिव थी टू नो अबाउट दैट किड जो कि अंजलि बनी हुई थी पूरी फिल्म में. लेकिन सैडली तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था टू नो मोर थिंग्स अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड. बट ये इकलौती मैं ही नहीं थी जो इतनी इमोशनल हो गई थी इस फिल्म को देखने के बाद. जब ये फिल्म शूट हो रही थी एट दैट टाइम टू, काफी सारे लोग सेट्स पर इमोशनल हो गए थे.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड रेवती जो कि शामली यानी कि ऑन स्क्रीन अंजलि की मदर का रोल प्ले कर रही थी, उनके और शामली के बीच में काफी सारे ऐसे सीन्स थे जो कि इमोशनल सीन्स थे. और जब वो सीन्स शूट हो रहे थे ना, तो जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, वो भी साथ साथ रो रहे थे. स्पेशली वो सीन जो कि हॉस्पिटल में शूट किया गया था, एंड दैट वॉज अंजलिज डेथ सीन. That was really, really heartbreaking. आज भी जब मैं वो सीन देखती हूँ ना भाई, मुझे तो रोना आ जाता है बहुत भयंकर तरीके से. And इसके पीछे की वजह ये है कि मणिरत्नम सर बहुत अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर, और बच्चों को वो पर्सनली रिहर्स करवाया करते थे सारे के सारे सीन्स मल्टीपल टाइम्स, सो दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल कर आए कैमरा पे. क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही पहले टेक के अंदर बेस्ट शॉट निकल कर आ जाया करता था. और वो ज्यादा टेक्स ले भी नहीं रहे थे इस फिल्म को शूट करने के लिए बच्चों के साथ. यही नहीं, मणिरत्नम सर वो सो इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ पेरेंट्स जो कि डील कर रहे थे विद स्पेशल चिल्ड्रन, कि उन्होंने इस फिल्म को महीनों की चाइल्ड साइकोलॉजी की रिसर्च वर्क के बाद ही शूट किया और लिखा. जिसका असर ये हुआ कि ये फिल्म इवेंचुअली वॉज बींग यूज एज अ रेफरेंस मटीरियल इन साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन स्टडीज अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज. स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ मनी सर डील्स विद द सोशल इश्यूज, और वो किस तरीके से इन सोशल इश्यूज को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेकर आते हैं और हाईलाइट करते हैं. ये उन्होंने सिर्फ अंजलि के साथ नहीं किया है, उनकी फिल्म बॉम्बे, दिल से, गुरु, ये सारी वो सारी फिल्म्स थी जिन्होंने सोशल इश्यूज को उठा के मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाके बड़े पर्दे पर दिखा के उसकी अहमियत को और बढ़ा दिया, और उन सोशल इश्यूज को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर किया. ये है हमेशा का जादू जो मणिरत्नम सर अपने लेंस के साथ बिखेर ही देते हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi helpline?
1: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, उसको सुनते के साथ ही ना आपके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आने वाली है। सुनो जरा।
2: दानू है दानू, इतना सजानू, हाँ

0: याद है दानू
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड दानू डायनासोर वाज आवर संडे का एंटरटेनमेंट का पिटारा बॉस। हर संडे हम ये कार्टून देखा करते थे फॉर श्योर विदाउट एनी फेल। लेकिन पता है मुझे क्या खास बात पता लगी है अबाउट दानू? वेल एक्चुअली इंडिया में तो हम इसे दानू के नाम से जानते थे, लेकिन दानू तो वो हिंदी में बन गया था। एक्चुअली दिस वाज एन इंग्लिश कार्टून शो जिसको कि डेनवर द लास्ट डायनासोर के नाम से बनाया गया था, और हिंदी में ये दानू डायनासोर बन गया था। क्लियरली एट दैट टाइम इंग्लिश कार्टून का मार्केट बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। तो आई तो लव दानू डायनासोर देन डेनवर द लास्ट डायनासोर। एंड इन फैक्ट जो इंग्लिश वाला कार्टून था ना, उसका गाना सुनाती हूँ आपको मैं। अच्छा है ना? लेकिन स्टिल आई वुड से कि जो हमारा हिंदी वाला कार्टून था ना डब्ड वर्जन, दैट वाज मच बेटर। उसका गाना तो मेरा जिंदगी भर के लिए फेवरेट है। Dinosaur, dinosaur, dinosaur. You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म बॉर्डर। और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ ना, पता नहीं अनु मलिक की कॉम्पोजिशन का क्या जादू है बॉस। इस गाने को सुनते के साथ ही ऐसा दिल करता है कि हाय मुझे प्यार क्यों नहीं हो रहा यार, क्योंकि प्यार में पड़े हुए इंसान को इस गाने को सुनने में कितना मजा आता होगा सोचो। इतना प्यारा लिखा है जावेद साहब ने, इतना रोमांटिक गाना, और ऊपर से ये जो मेलोडियस ट्यून है ना इस गाने की, कुछ कुछ होता है यार, और ये राहुल तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पितारा। और अब चलो अपने दिल की धड़कनों को समझने के बजाय कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, और वो है कुछ धुने। So basically, it's time for मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर दो गानों की धुने मैं आपके लिए चला दूंगी और आपको गैस करना होगा कि ये दो गाने एक्चुअली है कौन से। तो चलो फिर आज का जो मिक्स है वो है कुछ ऐसा।

0: और आज के दोनों मिक्सर्स में एक खास बात है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हिंट के तौर पे ये खास बात बता दी जाए कि ये दोनों ही गाने ना बॉलीवुड के दिलों के बादशाह के हैं। अब गेस करके बताओ ये कौन सा गाना है। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत
2: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? जेसीबी से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: The movie Bazigar, इसने हमारा दिल जीत लिया था. लेकिन क्या आपको पता है, हमारा दिल जीतने से पहले ये मूवी हॉलीवुड में भी काफी दिल जीत चुकी थी.
2: Mirchi, Thugs of Filmistan.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, not exactly Bazigar, but actually the story जिससे Bazigar inspired थी, that movie is A Kiss Before Dying, जो 1991 में रिलीज हुई थी, और Bazigar 1993 में रिलीज हुई थी. In fact, A Kiss Before Dying के अंदर इतने सारे ऐसे सीन्स हैं जो Bazigar में कट कॉपी पेस्ट किए गए हैं. लेकिन इसका एक और रीजन हो सकता है. वेल, द रीजन इज कि एक्चुअली देयर वाज दिस नॉवल जिसका नाम था A Kiss Before Dying, और ये जो दोनों ही फिल्म्स हैं, यानी कि A Kiss Before Dying एंड Bazigar, ये दोनों ही उस नॉवल से इंस्पायर्ड स्टोरीज हैं. तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि दोनों ही स्टोरीज एक जैसी दिखती हैं, लेकिन जो सीन्स हैं एकदम कट कॉपी पेस्ट किए गए हैं. अब उसका क्या बोल सकते हैं. यहाँ पर तो मामला यही है ना कि उठाया और लगाया, क्योंकि यार ठीक है स्टोरी सेम है बिकॉज राइटर एक है, लेकिन डायरेक्टर्स तो अलग अलग थे. खैर जो भी कहो, मेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर ही है यार Bazigar की तरफ, बिकॉज इट वॉज शाहरुख खान भाई इस फिल्म के अंदर. हाउ केन आई डिसाइड नॉट टू लाइक दिस फिल्म. नेवर एवर, पाप है ये मेरे लिए. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन Mirchi. इट्स हॉट.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो अब सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
4: Relative se advice slow to kehte hain.
6: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo. Dark circles honge, to future bright hoga.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हाँ, आज के टाइम पर there is a drawing room, dining room, bedroom, lounge. लेकिन पुराने घरों में इतने fancy terms use नहीं हुआ करते थे बॉस. सीधे सीधे नाम थे हर कमरे के.
2: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And back in the old days ना, जैसी करनी वैसी भरनी. ये कमरों के साथ भी हुआ करता था कि जो काम वो कमरा किया करता था ना, वैसा ही नाम उस कमरे को दिया जाता था. जैसे कि जहाँ खाना खाते थे वो खाने वाला कमरा था, जहाँ टीवी देखते थे वो टीवी वाला कमरा था, जहाँ मम्मा डैडी रहा करते थे वो मम्मा डैडी का कमरा था, और नानी के यहाँ तो भाई फ्रिज वाला कमरा, बिस्तर वाला कमरा और गेहूं वाला कमरा भी हुआ करता था यार. यानी कि जैसा कमरा हुआ करता था, जो उसमें काम हुआ करता था, वैसा ही उसका नाम हुआ करता था. ये लिविंग रूम, लाउंज, डाइनिंग रूम, ये इतने फैंसी फैंसी नाम नहीं हुआ करते थे कमरों के. लेकिन फिर भी ना, कभी पता ही नहीं लगा कि हमने कैसे फ्रॉम खाने वाला कमरा टू डाइनिंग रूम का जो टर्म है ना, वो अपनी जिंदगी में अपना लिया. कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, और जिसमें हमें पता भी नहीं लगाया कि हमें मुश्किल हुई थी कि नहीं हुई थी जब ये ट्रांजिशन हो रहा था हमारी लाइफ में. क्योंकि बचपन से तो हमारी आदत थी यार, अगर कोई चीज ढूंढनी होती थी जो कि टीवी वाले कमरे में रखी होती थी, तो एक आवाज आती थी कि अरे मेरी चप्पलें कहाँ है, तो अगला कहता था अरे टीवी वाले कमरे के बाहर ही तो उतारी थी तूने. एंड इट वॉज इजी टू फिगर आउट स्टफ. अब अगर कोई तब बोलता ना कि लाउंज के बाहर तो उतारी थी तूने, तो सब गोल हो जाते कि ये कौन सा कमरा आ गया यार हमारी जिंदगी के अंदर. वाकई में यार, कमरे में कमरा, कमरे में हम, इतने रंगीन थे ये नाम की कमरों के नाम में भी ये भरते थे दम. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: ¿Aló? ¿Aló?
3: Sir, very good evening. My bank to put on.
2: हाँ बोलिए
3: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
3: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बता दिए.
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है क्या?
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? ऐसे देने पड़ेंगे पैसे?
3: अब तो फंस गए सर.
2: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
2: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Zero Period.
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें शायद याद भी ना हो, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूले, क्योंकि तुम हमारी जिंदगी में जीरो नहीं, हीरो थे। जब भी स्कूल की घंटी सुबह सुबह बजती थी ना, तो हमारा दिल अगले 8 पीरियड्स की थकान से पहले ना तुम्हारी आस में ही बैठा रहता था। तुम बाकी पीरियड्स जैसे नहीं थे, ना कोई किताब, ना कोई लेसन्स, ना कोई बोर्ड पे रटा रटाया लेक्चर। तुम तो जैसे स्कूल के बोरिंग दिन में आई एक सांस की तरह थे। कभी तुम म्यूजिक की मस्ती बन जाते थे, कभी तुम लाइब्रेरी की किताबों में सैर करवाते थे, तो कभी मैदान में खुलकर खेलने का मौका देते थे, तो कभी क्लास टीचर से गप्पे लड़ाने का मौका भी मिल जाया करता था तुम्हारे जरिए। कुछ बच्चों के लिए तो तुम होमवर्क पूरा करने का एक बड़ा ही सीक्रेट सा गिफ्ट थे, तो कुछ के लिए तुम वो वक्त थे जिसमें की दोस्ती और गहरी हो जाती थी। याद है वो दिन जीरो पीरियड, जब रिपब्लिक डे की परेड की तैयारी के लिए तुम्हारे टाइम पर ही हम स्कूल ग्राउंड में जमा होते थे, या फिर वो दिन जब किसी टीचर की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और वो एक्स्ट्रा क्लास लेने से मना कर दिया करते थे और हमारी क्लास कैंसिल हो जाया करती थी, तो तुम्हारे बिना एक और खेल का मौका मिल जाया करता था हमें। तुम्हारी कोई तयशुदा पहचान नहीं थी यार, पर शायद इसीलिए ही तुम सबसे प्यारे थे। जब भी कभी तुम्हारा जिक्र होता है और कोई बोलता है जीरो पीरियड, तो एक मीठी सी मुस्कान खुद ब खुद चेहरे पर आ जाती है। तुमने हमें सिखाया कि हर टाइम पढ़ाई जरूरी नहीं होती, कभी कभी बस जीना और दोस्तों के साथ

0: कर हंसना भी जरूरी होता है। अब जब जिंदगी असल जिंदगी के पीरियड्स में बढ़ चुकी है ना, तो तुम्हारी याद और भी गहरा जाती है तुम्हारे उन्हीं हंसी ठिठोली वाले पलों के लिए। तुम्हारी पुरानी दोस्त जो अब भी जीरो पीरियड को बहुत मिस करती है, और शायद तुम्हारी वजह से ही जीरो आज भी हमारे लिए हीरो ही है। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत
2: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी। और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: मिड-डे मोहब्बत
1: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज फ्रॉम सेवरी टू स्वीट एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज
2: सारा ज़माना सारा का दीवाना
3: मिड-डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: जाने दो या जाने ना का राशिद अली की आवाज में ये जो गाना है ना इट्स सच अ सनशाइन सॉन्ग कैसेट के साइड बी का दूसरा गाना
3: मिर्ची 90s कैसेट
5: कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो इल्ज़ाम ना लगता है
4: देखो म्यूजिक तो इसका है ही पेपी बट जो इसके लिरिक्स हैं दे आर ऑल्सो सनशाइन यार मतलब जहां एक तरफ जो दिल टूटने की दिल दुखने की जुदाई की बात की गई है तो दूसरी तरफ देर इज लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल ये बात भी कही गई है विच स्पीक्स अ लॉट कि यार अगर हमारे साथ लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है ना कभी That is not the end of life, क्योंकि उसके बाद एक नई शुरुआत भी तो होती है जो कि इन लाइन से कितना क्लियर है और अब ये सनशाइन सॉन्ग मैं आपके लिए लगाते हुए जा रही हूँ और आपसे कह रही हूँ कि हमें रही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा अगर मुझे कहीं ढूंढना है ना तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बाय द नेम मिर्ची सारा यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
1: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैलेट सर्विस दे रहा है यार वो।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 4 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

Somos campeones, somos campeones. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ. भाई मैं बोल रही हूँ वी आर द चैंपियंस. स्पेन हमारा चैंपियन ट्रॉफी लेके गया कल की शाम. जब आपने देखा होगा किस तरीके से अर्जेंटीना और स्पेन का जो मैच था, इतना इंटरेस्टिंग मैच था जहाँ पे गोल ही नहीं हो रहा. इतने टाइम्स आई वॉज वेटिंग कि गोल अब होगा. जैसे ही गोल करने के लिए गोल कीपर के पास जाता था, वैसे ही वहां से कुछ ना कुछ होके वैनिश हो जाता था. मतलब दोनों ने ही टक्कर की गेम खेली है. एकदम इंटरेस्ट के साथ सभी की आंखें टिकी हुई थी कि कब होगा गोल और कब हम लोग चीते चिल्लाते कहेंगे कि हम जीत गए. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ और हाफ टाइम भी बीत गया और जब दूसरे हाफ टाइम की तरफ हम पहुंचे, तब हुआ गोल स्पेन से, पहला गोल. और वहां पे बाजी बिल्कुल पलट गई और पिक्चर क्लियर हो गई कि क्या होने वाला है आने वाले कुछ मिनटों में. तो बस पूरे स्टेडियम में माहौल बिल्कुल शांत हो गया था. लेकिन स्पेन के जो लोग थे वो नहीं शांत थे. अर्जेंटीना के लिए थोड़ी सी शांति का माहौल हो चुका था उस समय. बट हाँ, ओवरऑल अमेजिंग मैच. 2010 के बाद 2026 में जीता स्पेन ने दोबारा वर्ल्ड कप फाइनल्स. एंड इसी के साथ सेलिब्रेशन तो बनता है बॉस. आपको सुना रही हूँ गानों के साथ और मस्ती भरी बातों के साथ. मेरे साथ बने रहिए क्योंकि शाम को शानदार करने आ चुकी है मिर्ची ईशा. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची मैन. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sumanji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक। Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
8: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
9: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

कतर टॉय फेस्टिवल को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कतर टॉय फेस्टिवल एक्टिवेशंस भी लागू हो चुकी हैं हमारे दोहा कतर में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी एक्टिवेशंस की जहाँ पे हर मॉल में आपको एक कैरेक्टर का सारा सेटअप मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट बारबीज, तो वो एक पर्टिकुलर मॉल में आपको बारबी का पूरा सेटअप मिलेगा। वहां जाके आपके बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अभी तक टॉय फेस्टिवल नहीं गए हैं तो जगह जगह मॉल्स में ये छोटे छोटे जो एक्टिवेशंस लागू किए गए हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर कुछ मैं आपको बताऊं उसमें से, तो बात करें पिक्सार की, तो पिक्सार आपको मिलेगा प्लेस वैंडम में, बारबी मिलेगी सिटी सेंटर में, और मोआना मिलेगी दोहा फेस्टिवल सिटी में। ऐसे ही बहुत से और मॉल्स हैं जहां पे आपको ये एक्टिवेशंस मिलेंगी। तो देखिए, ये एक फायदे का सौदा इसलिए भी है क्योंकि ये 30th सितंबर तक है। बच्चे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ देयर वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं हर मॉल में। किसी भी मॉल में जा रहे हैं वहां पे उनको टॉय फेस्टिवल से रिलेटेड हर चीज मिलेगी। बस करना ये है, जाना है मॉल, एंजॉय करना है, बस थोड़े से पैसे भी खर्चने हैं और यहीं पे भी जाइए, आपको ये सारे एक्टिवेशंस अभी से मिल जाएंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ, इंटरेस्टिंग इवेंट्स के साथ। सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वाने, इट्स हॉट।

एक महान व्यक्ति की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी जिंदा रहती है। वहीं बात करें फादर एमिर की, तो उन्होंने कतर के विकास, संस्कृति और आधुनिक पहचान को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी विजन और उनके जो नेतृत्व को आज भी पूरे देश में सम्मान के साथ याद किया जाता है, और उसी याद में कतर म्यूजियम ने फादर एमिर की याद और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए कंडोलेंस बुक्स खोली हैं। इन पुस्तकों में आप सब अपनी श्रद्धांजलि संदेश लिख सकते हैं और इस महान नेतृत्व के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। एंड ये बुक्स जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में मिलेंगी, द नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में, और 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में भी आपको ये बुक्स मिलेंगी, जहाँ पे आप अपना संदेश लिख सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
0: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
2: अरे यार इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
2: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
2: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: दोस्ती कहकर सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
5: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
6: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
7: खूब मिलेगा, मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

हाय गर्मी, क्या आप भी बादशाह की आवाज में यही बोल रहे हैं हाय गर्मी? गर्मी के हालात तो ऐसे ही हैं कि आप उठते बैठते यही कहोगे हाय गर्मी, लेकिन आपको राहत देने के लिए और इस गर्मी में आप एकदम आराम से घूम सके, इसका समाधान लेके मैं आ चुकी हूँ आपके साथ। हाँ जी, कतर में है ऐसी ही बहुत सी जगहें जहाँ पे आप इस धूप में भी घूम सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉल्ड हुए हैं एयर कंडीशनर। यस, एयर कंडीशनिंग है वो प्रॉपर। आप एसी में आराम से घूम सकते हैं, वो भी आउटडोर। ठीक है, मैं आउटडोर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, उसमें से कुछ है ओम अल सनीम पार्क, प्लेस वेंडो मॉल लुसेल, अलगराफा पार्क, टोर्नेटो टावर, ड्यून प्लाजा वेस्ट बे, ऑक्सीजन पार्क, 21 हाई स्ट्रीट, कतारा कल्चरल विलेज, अल हज़ मॉल, वेस्ट वॉक अलवाब, क्रिस्टल वॉक वे, गिवान आइलैंड। ओ माय गॉड, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, अमीर कंट्री में रहने के ना ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप आउटडोर भी एसी में घूम सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
3: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम where you'll never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
2: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची It's Hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on मिर्ची It's Hot.
4: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
5: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार। टन भाई तंदूरी ही बन जाएगा ना आपका भाई, क्योंकि बात ही ऐसी है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: जी हाँ, वेदर कुछ इस प्रकार कह रहा है कि 42 डिग्री सेल्सियस इस समय है और आपको फील कराएगा ये 51 डिग्री। इतना ज्यादा जलम जली, तभी तो बोल रही हूँ बाहर निकलेंगे तो आपका सच्ची में रोस्ट ही हो जाएगा पूरा शरीर। इसीलिए बहुत जरूरी है तभी निकले। बेशक आप हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, और अगर जरूरी नहीं है तो ना ही निकले तो ही बेटर है। बातों का सिलसिला जारी है शाम शानदार में, और सुन रही मुझे यानी कि मिर्ची शको ने 89.6 मिर्ची वन एंड सॉल्ट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100813.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूँ प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

किसी भी आम इंसान की बात की जा सकती है, लेकिन मैंगो की बात तो भाई हमेशा स्पेशल होती है। और इसी स्पेशल मैंगो फेस्टिवल को और खास बनाती है ये जो थर्ड एडिशन पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन होने जा रही है। हम्बा एग्जीबिशन हो रही है सुख वाकिफ में, अभी चल रही है और 20 तक ही है ये। तो अगर आप वैरायटी ऑफ आम जो पाकिस्तान से आए हैं जैसे कि जौनसा, सिंदरी, ऐसे आमों का स्वाद चखना चाहते हैं तो जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 बजे से शुरू हो जाता है और 10 बजे तक रहता है एंड ये सिर्फ 20 जुलाई तक है। और आप उसी तरीके से प्लान करिए, जाइए, एंजॉय करिए एंड ये हो रहा है ईस्टर्न स्क्वायर सुख वाकिफ में। तो अगर प्लान कर रहे हैं आज शाम को जाइए और एंजॉय करिए एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, Uscabana, Sacabana, Gabana, Burga, Burga. La Virtua, la Burga.
1: Mirchi, Burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखिए फुटबॉल में तो स्पेन बाजी मार गए, लेकिन हमारे स्टूडियो में जो हमने कॉन्टेस्ट किया था उसमें भी कोई लोग जीते हैं। जी हाँ, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया एकदम सही, जिनका जवाब था स्पेन, 7 करोड़ व्यूअर्स मिले आपको, ऐसा ही हो। लेकिन हमने वो नाम निकाल लिए हैं, वो खुश नसीब जो है इनके नाम है, एक नाम है जाकिर। जाकिर जी आपने जीता है मिर्ची हैम्पर, और उसके अलावा है फैजल जी। फैजल जी आपने भी मिर्ची की तरफ से एक हैम्पर जीता है। जल्दी से जाके आप हमें मैसेज कीजिए और अपना हैम्पर लेके जाइए, आई ऑफिस और लेके जाइए अपना हैम्पर। और इसी के साथ ऐसे ही कॉन्टेस्ट के साथ बने रहना है आपने, तो बस करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है, यानी कि मिर्ची के साथ। ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा।

0: Qatar ka number one radio station.
1: 89.6
2: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: आजकल के बच्चे ना बड़े ही लकी हैं, उनको ऐसा मौका मिल रहा है इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने का। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक अंकल आते थे, झूले को ऐसे खुद ही हाथ से घुमाते थे और हम वो झूल के खुश हो जाते थे। लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, उनको आप बुद्धू नहीं बना सकते, उनको आप इतने इंटेलिजेंट है ना, उनको आप घुमा नहीं सकते, लेकिन वो हमें घुमा सकते हैं उल्टा। और उनके लिए ना वैसे ही इवेंट्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं कि उनकी पर्सनालिटी वो सूट करते हैं। तो अभी ये एक इवेंट बता रही हूँ ना आपको, जो है द कलर वर्स एक्सपीरियंस, जो एक इंटरैक्टिव फैमिली फोकस्ड एंटरटेनमेंट है। एंड ये अट्रैक्शन रोज हो रहा है, 15 जुलाई से ये शुरू हो चुका है एंड 15 सितंबर तक रहेगा, कतारा कल्चरल विलेज में, साउथ पार्किंग में। एंड ये डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद स्पेस टून, जो एक मल्टी सेंसरी इंडोर अट्रैक्शन विजिटर्स के लिए क्रिएट करती है। एंड ये बड़ा वाइज डिसीजन है इस टाइम, क्योंकि बहुत ही गर्मी है बाहर और इस दौरान हम इंडोर एक्टिविटीज ही सोचते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत ही वाइज डिसीजन है, बच्चों के साथ जाइए, इंजॉय करिए। एंड बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, एंड बच्चा भी इंजॉय करेगा, आप भी इंजॉय करेंगे, बस जाइए और इंजॉय करिए। एंड मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही इवेंट्स आपको बताती रहूंगी साथ ही साथ। सो स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड साथ।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
2: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
3: अलार्म लगा है। ओ गॉड, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
2: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
1: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस स्लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

हाँ जी, तो चलती ही रहती है, लेकिन ये बड़ी बात है कि इस समय करेंसी रेट क्या चल रहा है। बात करें करेंसी रेट की, तो आज की करेंसी क्या बोलती है? एक कतरी रियाल के बदले 26.40 इंडियन रुपीस, और अगर बात करें श्रीलंकन रुपीस की तो 92.18, और पाकिस्तानी रुपीस इज 76.38, और एक कतरी रियाल के बदले अगर आप नेपाली रुपीस की बात करें तो 42.25, और अगर बात करें बांग्लादेशी टाका की तो दैट इज 33.93। ऐसे ही पैसों की बातें चलती रहे और क्या ही चाहिए। स्टेडियम विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Mirchi Helpline?
1: या या या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए, व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा? तो खुद डिसाइड कर।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 6 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

एक महान व्यक्ति की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी जिंदा रहती है। वहीं बात करें फादर एमिर की, तो उन्होंने कतर के विकास, संस्कृति और आधुनिक पहचान को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी विजन और उनके जो नेतृत्व को आज भी पूरे देश में सम्मान के साथ याद किया जाता है, और उसी याद में कतर म्यूजियम ने फादर एमिर की याद और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए कंडोलेंस बुक्स खोली हैं। इन पुस्तकों में आप सब अपनी श्रद्धांजलि संदेश लिख सकते हैं और इस महान नेतृत्व के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। एंड ये बुक्स जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में मिलेंगी, द नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में, और 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में भी आपको ये बुक्स मिलेंगी, जहाँ पे आप अपना संदेश लिख सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virpa, la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि यार इतना यंग रहने के लिए तू क्या करती है, तो बोली अरे यार तुझे इतना नहीं पता, एग्जॉसम के इंजेक्शन आते हैं ना, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास होते हैं, वो लगाती हूँ और मैं यंग दिखती हूँ और एंटी एजिंग से बिल्कुल दूर रहती हूँ। लेकिन अगर आप कतर में रह रहे हैं तो कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक्सोजम प्रोडक्ट्स को इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल करने पे प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध मतलब बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, जो मर्जी कह लो लेकिन बंद कर दिया गया है। तो अगर आपके चाहने वाले या कोई भी कॉस्मेटिक कोई सर्जरी कराने के लिए या कुछ एंटी एजिंग के लिए ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उनको ये नॉलेज जरूर दीजिए कि अगर आपका ट्रीटमेंट एक्सोजम इंजेक्शन के साथ हो रहा है तो वो टोटली बैन है। तो अगर यंग रहना है तो हंसते रहिए, क्योंकि हंसना ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप यंग फील करेंगे, यंग रहेंगे और हमेशा लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटेंगे। और आपने क्या करना है, मुझे सुनना है, यानी मेरी शीशा को सुनते रहिए, उससे भी आप यंग दिखेंगे। जी हाँ, मेरी शीशा को सुनिए शाम शानदार में और स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: दुनिया में ना बहुत तरीके के फोबियाज होते हैं, लेकिन ये एक फोबिया मुझे भी है कि भाई इंश्योरेंस कहाँ से करानी है और कैसे करवानी है, सबसे बड़ा फोबिया है मुझे। लेकिन अब आपको भी बता दूं एक ऐसा बिजनेस अपडेट जो कतर सेंट्रल बैंक लेके आया है। QCB ने देश में पहली बार एक ऐसी कंपनी को लाइसेंस दिया है। इस कंपनी का नाम है आमिन। अब अगर आपको कार, हेल्थ या किसी भी तरीके का इंश्योरेंस लेना है तो अलग अलग कंपनियों की कीमतों को आप कंपेयर करने बैठ जाते हो, वो करने की जरूरत ही नहीं है। इससे ना सही प्लान भी चुना जाएगा और आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तो QCB का कहना है कि अगर हमने ये कदम कतर में उठाया है ना, तो इससे ना फिनटेक सेक्टर को और मजबूती मिलेगी, फिनटेक सेक्टर जो है और फ्लरिश करेगा। एक बात तो है, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का ये नया संगम कतर में डिजिटल सेवाओं को एक नई दिशा देने जा रहा है। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वाने थॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी। और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है।
6: इरशाद इरशाद,

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: एक कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाता है? ताकि आप लोग सेफ रहें। ऐसे ही द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने अनाउंस किए हैं कुछ लॉज ऑन द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ताकि पता लगे कि किस यूज के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड क्या क्या लॉज हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल में यही बता सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन अथॉरिटी कि आपके पास एक लीगल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को यूज़ करना है अपने बिजनेस बेनिफिट्स के लिए। तो आपको ये बताना ज़रूरी है व्हाट इज़ योर फ्रेमवर्क, व्हाट इज़ योर लीगल थिंग एंड एवरीथिंग यू हैव टू टेल टू द अथॉरिटीज़। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी द QCAA रेगुलेट करेगा आपके अनमैन्ड एयर क्राफ्ट को एंड इन कोऑर्डिनेशन विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज इवन जो नेशनल लॉज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही आपको परमिशन दी जाएगी। एंड ये सारी चीजें क्यों करी जा रही है? टू इंश्योर द सिक्योरिटी द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ कतर एंड ऑल्सो द सेफ्टी ऑफ एयर नेविगेशन एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट्स एयर स्पेस। तो ये सब चीजें आप ही के लिए हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ही कुछ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, एरियल कोई एयरक्राफ्ट है जो आप यूज कर रहे हैं अपनी बिजनेस पर्पस के लिए, तो प्लीज रूल्स को फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम कीजिए, लॉज को फॉलो कीजिए एंड ऑफ कोर्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हिच व्हेन यू लिव इन अ कंट्री यू नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
4: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
5: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था, हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
3: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल।
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Ja?
1: Hallo, Mercy Helpline?
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
2: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 7 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

आजकल के बच्चे ना बड़े ही लकी हैं, उनको ऐसा मौका मिल रहा है इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने का। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक अंकल आते थे, झूले को ऐसे खुद ही हाथ से घुमाते थे और हम वो झूल के खुश हो जाते थे। लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, उनको आप बुद्धू नहीं बना सकते, उनको आप इतने इंटेलिजेंट है ना, उनको आप घुमा नहीं सकते, लेकिन वो हमें घुमा सकते हैं उल्टा। और उनके लिए ना वैसे ही इवेंट्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं कि उनकी पर्सनालिटी वो सूट करते हैं। तो अभी ये एक इवेंट बता रही हूँ ना आपको, जो है द कलर वर्स एक्सपीरियंस, जो एक इंटरैक्टिव फैमिली फोकस्ड एंटरटेनमेंट है। एंड ये अट्रैक्शन रोज हो रहा है, 15 जुलाई से ये शुरू हो चुका है एंड 15 सितंबर तक रहेगा, कतारा कल्चरल विलेज में, साउथ पार्किंग में। एंड ये डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद स्पेस टून, जो एक मल्टी सेंसरी इंडोर अट्रैक्शन विजिटर्स के लिए क्रिएट करती है। एंड ये बड़ा वाइज डिसीजन है इस टाइम, क्योंकि बहुत ही गर्मी है बाहर और इस दौरान हम इंडोर एक्टिविटीज ही सोचते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत ही वाइज डिसीजन है, बच्चों के साथ जाइए, इंजॉय करिए। एंड बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी एंड बच्चा भी इंजॉय करेगा, आप भी इंजॉय करेंगे। बस जाइए और इंजॉय करिए एंड मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही इवेंट्स आपको बताती रहूंगी साथ ही साथ। सो स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड साथ।

0: Energy.
1: Busca bana, busca bana, saca bana. Ya bana. Burga, burga. La vieux bala burga. Energy burga.
2: Hello. Hello.
3: Sir, very good evening. Thanks a lot.
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
3: सर, आप तो सर पूरा बता दिए.
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो?
3: नहीं,
2: क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे ही कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: मैं पागल पागल है क्या?
3: आप तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे. अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या?
3: अब तो फंस गए सर.
2: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
2: उसका पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: एक महान व्यक्ति की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी जिंदा रहती है। वहीं बात करें फादर एमिर की, तो उन्होंने कतर के विकास, संस्कृति और आधुनिक पहचान को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी विजन और उनके जो नेतृत्व को आज भी पूरे देश में सम्मान के साथ याद किया जाता है, और इसी याद में कतर म्यूजियम ने फादर एमिर की याद और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए कंडोलेंस बुक्स खोली हैं। इन पुस्तकों में आप सब अपनी श्रद्धांजलि संदेश लिख सकते हैं और इस महान नेतृत्व के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। एंड ये बुक्स जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में मिलेंगी, द नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में, और 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में भी आपको ये बुक्स मिलेंगी जहाँ पे आप अपना संदेश लिख सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, it's hot. Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: गर्मी का मौसम अपने साथ सिर्फ तेज धूप ही नहीं लेके आता है, बल्कि हीट स्ट्रेस यानी गर्मी में होने वाली बहुत सारी स्वास्थ्य की जो समस्याएं है ना, वो भी लेके आता है। और इसी रिगार्डिंग MOL ने ऑर्गेनाइज किया ये सेमिनार, जो प्रमोट करता है हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन अवेयरनेस लोगों के बीच में, ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरीके से हीट स्ट्रेस में आपको अपने आप को डील करना है एंड किस तरीके से इस सिचुएशन से बचना है। तो ये एक ऐसा सेमिनार था जो कोलैबोरेशन किया गया विद नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ। इसमें अलगराफा ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी भी थी, यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनीज भी थी एंड GEC कॉन्ट्रैक्टिंग भी थी, अलकैट कॉन्ट्रैक्टिंग भी थी, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज थी जो इसमें आके हिस्सा दी और सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट भी जो इसके साथ जुड़े थे और वर्कर्स को किस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहिए अपनी हेल्थ के साथ, वो सारी नॉलेज दी। और उसमें तकरीबन ये भी बातें आ दी कि भाई पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और कंटिन्यूस काम ना करें धूप में, थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर काम करें, इस अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको नियमित रखिए पानी पी के। एंड इसके अलावा अगर आप लोग भी किसी ऐसे वर्कर को धूप में काम करते हुए देखते हैं और अगर आप बाय चांस बाहर है तो प्लीज़ पानी ज़रूर ऑफर कीजिए। कि ऐसी ही अपडेशन के साथ सुनते रहिए मुझे यानी कि मिर्ची ईशा को शाम शानदार में। स्टे ट्यून विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो अब सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Boldal Bollywood Bollywood Bollywood Boldal
1: Only on Mirchi It's Hot
4: Our business is our business None of your business
5: Par didi our entertainment is your entertainment Entertainment
6: Qatar ka number 1 radio station
7: 89.6
8: 89.6 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

ना देखिए, ऐसी कभी सिचुएशन आए ही ना जब आपको किसी को अलविदा कहना पड़े। और क्योंकि अलविदा की बात चल रही है तो मैं बता दूं, मेरा जाने का समय भी आ चुका है और आप लोगों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है फटाक से। और आप लोगों के साथ गप्पे मारते हुए, आपको गाने सुनाते हुए मेरा समय हो गया है जाने का। अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, कल फिर मिलूंगी आपको इसी समय इसी जगह और यहीं पे इसी टाइम पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड शबा केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101 इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: मोहब्बत की तरह फिल्में भी कभी एक तरफ से नहीं चलती, उसके लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक जो कहानियां बनाते हैं और दूसरे जो उन कहानियों में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। हिंदुस्तान में फिल्में कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, ये हमारे घरों में पली हैं, हमारी मोहब्बत में बसी हैं, हमारे दर्द में रोई हैं और हमारी खुशियों में नाची हैं। शायद इसलिए हम एक्टर्स को सिर्फ स्टार्स के रूप में नहीं देखते, कभी कभी हम उन्हें भगवान बना देते हैं। लेकिन हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है, और मुझे लगता है बॉलीवुड और उसके ऑडियंस का रिश्ता भी आजकल कुछ वैसे ही दौर से गुजर रहा है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई है, लेकिन बेचैनी कहीं खोसी गई है। और मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, बेपरवाही होती है। फिर भी जब कोई फिल्म या कोई गाना दिल से बनता है, हम उसे आज भी उतनी ही शिद्दत से अपना लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ। लेट मी सुरेन सुंदरम स्टार ऑफ द मिर्ची टॉक 20, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक का आईना है, द ट्रू मिरर, और व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। और नंबर 20 पर वो गाना जो वक्त के साथ अपना बनता जा रहा है, यार इस फहीम अब्दुल्ला विद सैयारा।
4: नंबर 20.

0: पिछले कुछ हफ्तों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई। दो स्पाई फिल्म्स लगभग एक ही दौर में हमारे सामने आई। एक थी धुरंधर और दूसरी थी अल्फा। याद है मैडी ने रिलीज से पहले एक बात कही थी,
1: मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा।
0: उस वक्त ये स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंट लगा था, लेकिन अल्फा देखने के बाद मुझे लगा शायद वो इतना गलत भी नहीं था। धुरंधर ने स्पाइस को हीरोज नहीं प्रोफेशनल दिखाया है। उनके डिसीजंस में एक लॉजिक था, एक रिस्ट्रेंट था। अल्फा में मुझे लगा ग्लैमर ज्यादा था, ग्राउंड रियलिटी काफी कम। और जब स्पाई फिल्म में आप ऑथेंटिसिटी खो देते हैं तो टेंशन भी खो देते हैं। स्पाई फिल्म में सबसे बड़ा VFX ऑथेंटिसिटी होता है। एक और बात मेरी समझ से बाहर है, YRF Spy Universe, जिसकी पहचान कभी उसके म्यूजिक से भी होती थी, इस बार गाने आए लेकिन याद ही नहीं रहे। और बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है। अब देखना होगा Spy Universe अपनी अगली चाल कैसे चलता है। फिलहाल नंबर 18 पर दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा फिसलता हुआ, दिस इज क्यू फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस
1: कौन बोल रहा है
2: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
1: क्या मजाक चल रहा है
2: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
3: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1 It's hot
0: Surin ke saath only on Mirchi It's hot Number
6: 12 Katl karti hai nigaahein ki dil ko khabar na ho zakhm deti hai aisa कि दर्द का असर ना हो हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो

You know, sometimes एक पुराना गाना जब वापस आता है वो हमें उस जमाने की याद दिला देता है जब उसे गाने वाली आवाज अपने करियर के पीक की तरफ बढ़ रही थी। इश्क अमीना इज टेकिंग अस बैक टू 2002, लेकिन मेरी नजर उस सोनू निगम पर है जो उससे पहले खुद को ढूंढ रहे थे। हर लेजेंड का एक गोल्डन पीरियड होता है, एंड सोनू जी के लिए वो पीरियड था व्हेन ही सैंग कल हो ना हो, मैं हूं ना, दो पल रुका, कभी अलविदा ना कहना, अभी मुझ में कहीं। लेकिन उससे भी खूबसूरत होता है उस लेजेंड के बनने का सफर। लेट्स रिवाइंड टू 1997, एक आवाज आई जिसने बताया कि बॉलीवुड को एक नया हीरो मिल गया है।

फिर ए आर रहमान ने उस आवाज को आजमाया और सोनू जी ने साबित कर दिया कि मुश्किल कॉम्पोजिशन नाम की कोई चीज नहीं होती उनके लिए।

एंड उसके बाद आए कल हो ना हो, मैं हूं ना, अभी मुझ में कहीं, लेकिन मेरे लिए सोनू निगम का असली जादू उनके सुपरस्टार बनने में नहीं, उनके सुपरस्टार बनने के सफर में था। वैसे इस हफ्ते नंबर 11 पर है वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, मगर मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक उसी दौर का एक गाना है जिसे सुनते ही लगता है मोहब्बत भी कभी एक तन्हा आवाज होती है। टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
4: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी। और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

एक हफ्ता हो गया है इस गाने को लूप पे सुनते हुए। वे जुनून फ्रॉम आवारा पंटू, इमरान हाशमी का माइनस टच और मिथुन का मैजिक। और जितना गाना सुना उतना ही लोगों को भी सुना, उनके कमेंट्स, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनका सोशल मीडिया। और मुझे एक बात समझ में आई, हम शायद वे जुनून को सुन ही नहीं रहे, हम उसकी कंपैरिजन अपनी यादों से कर रहे हैं। आवारापन की असली लेगेसी फिल्म नहीं थी, उसका म्यूजिक था और उनके साथ जुड़ी हमारी यादें। और ये कभी इम्पार्शियल नहीं होती, पर अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सैयारा की झलक है, हो सकता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, जब हम किसी नए गाने को सुनते हैं पुराने दिल के साथ सुनते हैं, उससे वही महसूस करना चाहते हैं जो 20 साल पहले किया था, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। हर सीक्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली फिल्म नहीं होती, उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और अब देखते हैं क्या वक्त वे जुनून के साथ भी वही करता है जो उसने तो फिर आओ के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली अगला गाना आपके इमोशंस को उतना नहीं टटोलेगा, क्योंकि इसका नाम है चटनी। ये है फ्रॉम धमाल 4 एंड इस हफ्ते है नंबर 9 पर। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: Janelia Deshmukh.
4: Are you an honest critic?
5: I'm an honest critic, but I'm also good for your ego.
4: अरे क्या बात है?
5: Like even if you're my friend, I mean,
4: मुझे validate कर ले यार. Hello, Janelia. I'm not feeling great.
5: अरे honest too,
4: man. Queen. Where's your crown?
3: She's an honest critic, but a very funny person also. ये थी Janelia Deshmukh on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
6: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन It's hot.
0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
9: Number 2.

कदर नंबर टू विद द सुपरस्टार हु इज बैक ऑन हिज कमबैक ट्रेल। भूत बंगला के बाद एक और स्मैश हिट वेलकम टू द जंगल एंड अक्षय कुमार के तारे पूरी तरह बदल चुके हैं। और इस गाने के बाद मुझे याद आ रहे हैं एक और सुपरस्टार बाय द नेम ऑफ ऋतिक रोशन। अल्फा रिलीज हुए अब कुछ हफ्ते हो गए हैं और जितनी बातें फिल्म की नहीं हुई उतनी ऋतिक रोशन की कैमियो की हुई। वो आए, 2 मिनट रुके और चले गए। एंड तब मुझे लगा यार बॉलीवुड ऋतिक रोशन को अब थोड़ा कम समझने लगा है, क्योंकि ऋतिक कभी सिर्फ एक्टर थे ही नहीं, वो एक बेंचमार्क थे, एक स्केल थे, एक फेनोमेना थे। आज भी ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता, ये एक जमाना लगता है। और सोचिए ऋतिक रोशन का ये एक डांस स्टेप कुछ एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा याद रखा जाएगा। बस एक स्टेप, इतना बड़ा था इसका इंपैक्ट। ऋतिक रोशन वॉज द लास्ट बिग सुपरस्टार एंड अब 25 साल बाद बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उस अंदाज में दिखा ही नहीं पा रहा है। कैन यू बिलीव इट That War in 2019 was his last big blockbuster, and maybe that's why. मुझे लगता है कि बॉलीवुड को फिर से उस स्केल के सुपरस्टार की सख्त जरूरत है। मेरी नजर में और शायद आपकी नजर में सिर्फ दो लोग कंटेंडर्स हैं, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। और टैलेंट दोनों के पास है, they have some major acting chops, लेकिन अब बारी है अपनी लेगेसी लिखने की। और इस वक्त इस रेस में जो फिल्म सबसे आगे खड़ी है उसका गाना दूसरे हफ्ते भी मिर्ची टॉप 20 का नंबर 1 सॉन्ग, गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर नंबर 1।

0: हैंड्स डाउन इस काउंटडाउन का सबसे मैजिकल गाना, दूर दूर तक कोई कंटेंडर नहीं नजर आ रहा मुझको, एंड दैट मेक्स मी रियल हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस को यही एंड करना पड़ेगा, माय टाइम इज अप, बट जब जब मिर्ची टॉप 20 लगाओगे तब तब मुझे ही पाओगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
3: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूँ प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
2: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
4: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
5: It hurts.

एक पुरानी फिल्म है नाइट इन लंदन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म की काफी शूटिंग लंदन में हुई है, हांगकांग में भी हुई है, लेकिन फिल्म में ना कुछ सीन्स जो ऐसे दिखाए गए हैं कि हांगकांग में है वो एक्चुअली इंडिया में है, क्योंकि उनमें जो गाड़ियां इस्तेमाल की गई हैं उनमें इंडियन नंबर प्लेट है। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडियन गाड़ियां हांगकांग उठा के लेके गए होंगे, वो ऐसा हुआ होगा कि शूटिंग से वापस आ गए होंगे, फिर कुछ चेंजेस हुए होंगे, हो सकता है कुछ सीन्स दोबारा शूट करने हो, तो उन्होंने सोचा होगा इंडिया में ही शूट कर लेते हैं, फिल्म में हांगकांग बता देंगे, किसी को क्या पता चलेगा। ठीक है यार, हो जाता है। चलो अभी इसी फिल्म का एक अति रोमांटिक गाना हम सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

किशोर कुमार जी ने अपने करियर में कई कारनामे, कई ब्रिलियंट काम किए हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक कारनामा ये भी होता था कि उनके गाने उन्हीं के गानों से कम्पीट करते थे, जैसे कि 1985 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में, मतलब जो 1984 की फिल्में थी 1985 में अवार्ड्स हुए थे, उसमें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में सारे नॉमिनेशन किशोर कुमार के थे, वो भी एक ही फिल्म शराबी के। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, फिर दे दे प्यार दे, फिर इंतहा हो गई, उसके बाद मंजिलें अपनी जगहें। No prizes for guessing, award तो किशोर कुमार को ही मिला। और किस गाने को मिला? इस गाने को जो हम सुनने वाले हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
4: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी। और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन,
11: इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: पता है लता मंगेशकर जी ने एक बार किशोर दा का इंटरव्यू लिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस इंटरव्यू में किशोर दा ने शेयर किया था कि कैसे उनकी और लता जी की पहली मुलाकात हुई थी लेट 40s में, जब ये दोनों एक ही स्टूडियो जा रहे थे एक डुएट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: हमारी तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी? तुम ट्रेन में आती थी, मैं भी ट्रेन में आता था। पहली मरतबा जब तुम मिली थी, तुमने मुझे ऐसे देखा था, मैंने तुमसे देखा, फिर तुम उतरी, मैं भी उतरा, तुम टांगे में बैठे, तुमने मुझे देखा, मैं भी टांगे में बैठा, फिर तुम पहुंची बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे पर, मैं भी वहां पहुंचा, तुमने सोचा ये फॉलो कर रहा है, क्या बात है, कौन है, फिर हम दोनों चले गए और हम तक जिद्दी के गाने गा रहे
2: हैं।
0: वैसे ये 1948 की जिद्दी फिल्म, इसमें किशोर दा का पहला सॉन्ग एज प्लेबैक सिंगर रिकॉर्ड हुआ था और लता जी के साथ उनका पहला डुएट भी रिकॉर्ड हुआ था। खैर इन्हीं दोनों का एक और सुंदर सा डुएट यहाँ पर सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
4: हाँ, लगता ही है। He's the kind of director, as an actor, you have to really trust him. Because he is, his ideas come from where you never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
3: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood बोल डाल,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
5: Hey! Basanti, in kutto ke saamne mat nachna.
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुराने गानों में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज होता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था अकॉर्डियन। और एक ना SD बर्मन साहब का गाना है चुपके चुपके फिल्म का, सारे गामा गीत पहले बना था उसका एक, ये अकॉर्डियन का पीस सुनो आप। याद आया, ऐसा सा ये पीस किसी और गाने में भी यूज हुआ है, वही गाना जो हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। इजाजत फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय RB बर्मन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Yes, of course, Mirchi Helpline. बोलिए.
1: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है. क्या करूं?
2: What क्या करूं? It's simple, bro. Thank you, बोल उसको. Thank you. Free valet service दे रहा है यार वो.
3: साले का खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़.

राष्ट्रीय फिल्म्स की 1989 की ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में लीड रोल के लिए, हीरो के रोल के लिए पता नहीं कितने सारे लोगों को कंसिडर किया गया था। संजय कपूर, अनिल कपूर के जो छोटे भाई, दीपक मल्होत्रा वो मॉडल जो लम्हे फिल्म में जिनका रोल था श्रीदेवी के ऑपोजिट, फिर फराज खान वो जो 1996 की फरेब मूवी में भी आए थे। इनको तो शायद साइन भी कर लिया गया था बट ये बीमार हो गए थे तो इनको फिर फिल्म छोड़नी पड़ गई थी। अच्छा, मनोज कुमार साहब के बेटे कुणाल गोस्वामी, उन्होंने तो इस फिल्म के लिए ऑडिशन भी किया था लेकिन फिर बाद में खुद ही मना कर दिया। देन विंदु दारा सिंह, उनको भी शायद साइन कर लिया गया था। और तो और पीयूष मिश्रा साहब, उनको भी कंसिडर किया गया था लेकिन फाइनली आना था सलमान खान ने, वो आ गए, उनका टाइम भी आ गया सुपरस्टार बनने का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
4: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
4: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
4: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: हाँ बोलो।
4: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
4: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा
4: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
4: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
4: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
4: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
4: 4 लीटर में आप, मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा जो
4: सोडा, हाँ खाने वाला सोडा। नहीं नहीं नहीं, लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
4: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
4: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
4: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
4: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
4: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
4: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे ये बात बड़ी अमेजिंग लगती है कि पुराने गाने इतने अमेजिंग हैं कि कैसे गानों में से गाने निकल आते हैं। मतलब कोई भी लफ्ज आप पकड़ लीजिए, उसमें कोई गाना निकल आता है। जैसे लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, ये गाना जो हमने सुना, तो अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अच्छा ये जो गाना है फिर, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों से हम ले लेंगे गाना कौन सा, आंखों आंखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो, फिर बाहों से बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम। नाम से कौन सा गाना सुनेंगे, ये वाला। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, साथ ही रखना छोड़ना नहीं, ठीक है। आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

बदनामी पर एक बहुत ही सही शेर है अकबर इलाहाबादी साहब का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, वो अमर अकबर एंथनी वाले अकबर इलाहाबादी नहीं, काफी महान शायर रहे हैं अकबर इलाहाबादी। उनकी लाइंस हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा, भूलने पर भी कुछ लाइंस हैं, पर ये बहादुर शाह जफर साहब की हैं। तुमने किया न याद कभी भूलकर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
4: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए?
5: अलार्म लगा है। ओह गॉड, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
4: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
3: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: 89.6,
0: 89.6, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: भाई पुरानी फिल्मों में जहाँ हीरोइंस अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होती थी, जहाँ अक्सर उनको फिल्मों में बहुत अच्छी सीधी सादी मॉरल्स वाली दिखाया जाता था, वहाँ पर कुछ हीरोइंस ऐसी थीं जिन्होंने कुछ बोल्ड चॉइसेस भी की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ऐसी ही एक एक्ट्रेस माला सिन्हा जी। काफी फिल्मों में इन्होंने इस तरह के रोल किए जो उस टाइम के हिसाब से टैबू थे। जैसे दो फिल्में तो मुझे इनकी याद आ रही हैं, धूल का फूल और धर्मपुत्र, जिसमें इनके रोल में ये शादी से पहले अपने रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अच्छा, एक और इनकी फिल्म थी गुमराह, जिसमें शादी के बाद ये अपने एक्स लवर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अपने इस थोड़े वैम्पिश रोल के बारे में सुनिए, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: वो बहुत बारीकी थी उस रोल में, गुमराह के रोल में। थोड़ा भी अगर उसका एक्सप्रेशन, उस लड़की का एक्सप्रेशन में, या चलने में, या देखने में, या बोलने में, या डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा भी अगर फर्क पड़ जाता तो वो कैरेक्टर बहुत ही गंदा लगता या वैम्प हो जाती। पर चोपड़ा साहब ऐसे डायरेक्टरों में से हैं जो कि वाकई कैरेक्टराइजेशन को समझते हैं और किस तरह से उसको सलीके के साथ ले जाए, पेश करे, उनमें वो खासियत है। इसलिए वो रोल अच्छा ही लगा, आंखों को खटका नहीं।
0: तो चलिए इसी फिल्म से खूबसूरत गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

भाई आरडी बर्मन और लिरिसिस्ट गुलशन बावरा काफी अच्छे दोस्त थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो एक बार आरडी बर्मन गुलशन बावरा के यहाँ मीटिंग करने आए, तो गुलशन बावरा जी की वाइफ अंजू जी, उन्होंने इनसे पूछा कि खाने में क्या बनाऊं। तो आरडी बर्मन ने एक बर्तन उठाया, उसे अपने हाथ से बजाने लगे और गाने लगे कि सरसों का साग बना दे अंजू, मक्की की रोटी बना दे अंजू। और इसी ट्यून पे फिर ये गाना बना जो हम सुनने वाले हैं, 1978 की फिल्म कस्मे वादे का टाइटल ट्रैक, जो ऑफ कोर्स लिखा है गुलशन बावरा ने, कंपोज किया है आरडी बर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: लेट 80s की एक बहुत ही पॉपुलर जोड़ी थी, ऋषि कपूर एंड श्रीदेवी। फिर जी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नगीना एंड चांदनी में क्या हिट हुए थे ये दोनों। अच्छा, एक बार कपिल शर्मा शो पे ना ऋषि कपूर जी ने शेयर किया था कि नगीना फिल्म के दौरान जब श्रीदेवी और ये पहली बार साथ में शूटिंग कर रहे थे तो एक क्या इंसिडेंट हुआ था।
1: एक दिन मुझे याद है कि एक शॉट चल रहा था, फिल्म की मैगजीन होती ना वो रन आउट हो गई, तो लाइट्स जैसे ये सब लाइट्स ऑन है और वो 2 मिनट लगता है चेंज करने को, मैगजीन निकाला मैगजीन और कैमरे में लगाया मैगजीन, तो वो जो 2 मिनट का डिस्कम्फर्ट होता है कि एक्टर एक्ट्रेस खड़े में, लाइट्स चालू है, सब साइलेंस है सब जगह और वहाँ क्या कहें। तो मुझे श्रीदेवी जी ने कहा कि सर आई सॉ खेल खेल में 4 times, बड़ा अच्छा लगा ऐसे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं क्या रिटर्न कॉम्प्लीमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी पिक्चर मैंने देखी है। कमाल की एक्ट्रेस, कमाल की एक्ट्रेस।
0: क्या बात है, चलिए दोनों पे पिक्चराइज्ड ये सुपर रोमांटिक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गलियों की निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: पुरानी जींस विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
5: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी। और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? जेसीबी से।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
1: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
9: पुरानी
1: पुरानी जींस विद चारू ओनली।

0: आए दिन बहार के आए हाय हाय हाय, इस फिल्म का गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना, तो आशा पारेख जी जो इस फिल्म की हीरोइन थी, उनके लिए वो दिन खास बहार के नहीं थे, क्योंकि धर्म जी के साथ वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी और धर्म जी सेट्स पर अल्कोहल कंज्यूम करके आते थे, जिसकी स्मेल आशा जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार धर्म जी अल्कोहल की स्मेल को एक स्ट्रॉन्गर स्मेल से हटाने मिटाने की कोशिश करते, जैसे कि बहुत सारा प्याज खा लिया, जो आशा जी को और भी ज्यादा परेशान करता। तब आशा जी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई आप ऐसा ना करें, प्लीज प्लीज प्लीज। उसके बाद धर्म जी ने जो फिल्म के सेट्स पर न पीने की प्रतिज्ञा ली, उसको भरपूर निभाया। इनफैक्ट हिल स्टेशन में जहाँ ये शूट करते थे, कई बार ऐसा धर्म जी का दिल डोला कि वो कुछ कंज्यूम कर लें, लेकिन क्योंकि उन्होंने आशा जी को प्रॉमिस किया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी आप फिलहाल एक काम कीजिए, मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
4: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
5: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था, हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
3: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: 89.6, 89.6,
0: it's hot. पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

मनोज कुमार साहब के बेटे कुणाल गोस्वामी, इनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इनकी डेब्यू फिल्म थी 1983 की फिल्म कलाकार, तब ये मात्र 18 साल के थे। और एक इंटरव्यू में इन्होंने शेयर भी किया था कि इनको बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया गया। सीन कुछ यूं हुआ कि जब ये 16 साल के थे तभी ये 6 फुट के हो गए। तो फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स जब इनके घर आते थे इनके फादर मनोज कुमार साहब से मिलने, तो लड़के को देखकर बोलते थे कि इसको फिल्मों में लॉन्च कर देते। ये उनसे बचते बचाते छुपते छुपाते यहाँ वहाँ से घर से निकल जाते थे, लेकिन किसी तरह फिर पकड़ में आ गए। थोड़ा प्रेशर बढ़ गया क्योंकि तब और स्टार सन्स भी लॉन्च हो रहे थे, संजय दत्त, कुमार गौरव, सनी देओल, तो इनको भी लॉन्च कर दिया गया। लेकिन ये इतने यंग दिखते थे, इतने छोटे दिखते थे, समहाउ ऑडियंस ने इनको एज लीडिंग हीरो एक्सेप्ट नहीं किया। खैर जो भी है, इस फिल्म का ये गाना बहुत सही है जो हम फिलहाल सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

89.6 Mirchi 1. It's hot.

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा।

89.6 Mirchi 1. It's hot.

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, वन रिपीट।